एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2026। समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया

0: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष रहे कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

विश्व 10 मिनट पर विषय आज का रहेगा सलाह लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुनेंगे 6:45 पर। श्री रामचरितमानस गान होगा 7:20 पर। आज आप सुनेंगे उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या 407 नमस्कार चूरू, ये कार्यक्रम होगा 7:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात होंगे 8:00। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुनेंगे झलके। समाचार तरंग होंगे 8:45 पर हमारे जयपुर केंद्र से। 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।

9:10 पर आप सुनेंगे देशगान। फिल्मी कव्वाली महफिल आप सुनेंगे 9:15 पर। किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। 11:00 आप सुनेंगे, माफ कीजिए, 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। आज के कलाकार शंकरलाल सिहाग और साथी रहेंगे। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे 1:00। 1:05 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन। 2:00 हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज होगी। 2:15 पर दोपहर समाचार होंगे। ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेल बॉक्स आप सुनेंगे 2:30 पर।

शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। 6 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 6:05 पर होंगे। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे 6:10 पर। संस्कृत में समाचारों के लिए समय है शाम 6:20 का। हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30 पर। तत्पश्चात कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों के लिए समय है 6:45 का। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी। रात्रि 9 बजे श्रोता सुनेंगे News@9। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे 9:15 पर। पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। हमारे जयपुर केंद्र से खेल जगत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर सुगम संगीत होगा। हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के चिंतन में। मैं हूं आपके साथ रेडियो साथी अंकिता। श्रोताओं, आज हमारा विषय है सलाह लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। श्रोताओं, हम अक्सर हमेशा चाहते हैं

कि हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से सारे कार्यों को स्वयं करें, निर्णय भी स्वयं लें। ऐसा करना कहीं गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों में सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सलाह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करती है। इससे हम कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें कि हमने सलाह लेके काम किया है तो हम कमज़ोर हैं, हमें आ नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सलाह व्यक्ति जब दे रहा होता है तो आप ये मान के चलें कि उसने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे को हमें बताया है। हम जितने सालों के हैं, हमने जितना जीवन जिया है, सलाह जो दे रहा है अगर वो हमसे बड़ा है तो इस बात को हमें समझना होगा कि उन्होंने अपने जीवन का सार हमें कुछ ही पलों में बता दिया है, जिसको हम ग्रहण कर उनके जीवन का कितना सीखा हुआ कुछ ही पलों में प्राप्त कर सकते हैं। अगर सलाह लेनी है और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति छोटा है उम्र में, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम उससे सलाह ले सकते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र में हमारा उतना ज़्यादा विस्तृत, हमारी सोच का दायरा नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं, और वो हमारे किसी साथी से राय करके, उसकी बातों को जान के हम अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं। इस संसार में कोई भी संपूर्ण नहीं रखता। संपूर्णता अगर सबके पास आ जाए या किसी के पास भी आ जाए तो फिर वो भगवान बन जाएगा। इसलिए संपूर्णता नहीं है किसी के पास, तो ये मानते हुए हमें ये भी मानना होगा कि हम भी संपूर्ण नहीं हैं, हम भी वो नहीं हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी कार्य में अगर किसी की सलाह लेनी पड़ रही है तो हमें झिझक नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये मान रहे हैं कि सलाह लेना कमजोरी है हमारी, तो ये बहुत ही गलत है। विपरीत इसके हमें ये समझना होगा, सलाह लेकर अपने कार्यों को सुलभ बनाना, ठीक बनाना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। अगर हम किसी की सलाह लेकर आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं तो ये बुद्धिमानी है, क्योंकि हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हो सकता है किसी की सलाह मात्र से वो जद्दोजहद आधी हो जाए। इसमें आप अगर किसी की सलाह ले रहे हैं, बस इस बात को तय जरूर करें कि सलाह देने वाला आपका शुभचिंतक हो। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो सलाह देने वाला है उसमें इस बात की क्वालिटी हो, उसकी एबिलिटी हो कि वो आपको सलाह दे रहा है, वो सलाह एक सही रास्ते पर जा रही है। निर्णय तो आपके स्वयं के ही होंगे, निर्णय करने वाले तो हम ही हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन वो सलाह अगर हमारे काम आ रही है तो ये बुद्धिमानी है। इस बुद्धिमानी से न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। जिन भी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जीवनी को हम पढ़ते हैं तो हमेशा वो अपने मार्गदर्शकों के बारे में ज़रूर बताते हैं, चाहे वो गुरु हो, माता पिता हो, अन्य कोई मित्र हो या कोई भी हो। ऐसा व्यक्ति हमारे पास अगर है जिसकी हम सलाह लेके हमारा काम सुलभ बना सकते हैं, मंजिल तक पहुँचने में सहायता ले सकते हैं, तो ये कहीं कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। तो श्रोताओं, ये था चिंतन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है। समय 6:10, 15 मिनट हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

सभी श्रोताओं का स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में। पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ताजमहल फिल्म से।

मोहम्मद रफी की ही आवाज में श्रोताओं ने अभी सुना गीत फिल्म का गीत। आप सुन रही हैं श्रोताओं गीत बहार, गीत गाता चल। इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचेत मानस कान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या आज आप सुनेंगे 407। कलाकार हैं सुरेश पाटकर, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 407।

पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, न ही उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरद्वाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

सभी श्रोताओं को रेडियो साथी अंकिता का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम नमस्कार शुरू में मैं बनी रहूंगी आपके साथ। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चर्चाएं और साथ ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ आप भी सुनते रहें कार्यक्रम नमस्कार शुरू।

इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं, आइए बात करते हैं हम बोलते कैसे हैं। बोलने का अंदाज हमेशा अपने व्यक्तित्व की पहचान होता है। हम अक्सर कुछ लोगों को देखते हैं जो हमेशा पहचान जाते हैं कि उनके सामने जो बात करने वाला व्यक्ति है, जो बैठा है, उनसे बातें कर रहा है, वो व्यक्ति किस प्रकार का है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आप 2 मिनट की बातों से कैसे जान लेते हैं कि सामने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है। क्या वो बहिर्मुखी व्यक्ति है, अंतर्मुखी है, या किस प्रकार से वो सोच रखता है आपके प्रति, अपने आसपास के प्रति। इन सब बातों को जानना वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम किन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो उससे हम भी जान सकते हैं सामने वाले के बोलने के अंदाज से कि वो किस प्रकार की सोच रखता है या उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए बोलने का अंदाज हमें कुछ खास बनाना चाहिए। बोलने का अंदाज अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो आपके लिए दूसरों की मानसिकता जो बनेगी वो सकारात्मक बनेगी। अगर आपका मानसिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मन में बहुत अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आपके बोलने का अंदाज ठीक नहीं है, शब्दों का चुनाव ठीक नहीं है, तो हो सकता है सामने वाला आपकी बात को ठीक से ना समझ पाए और आपके अंदाज के अनुसार आपके व्यक्तित्व को पहचाने। तो आपके अंदाज के अनुसार आपके व्यक्तित्व को जब पहचाना ही जा रहा है तो फिर क्यों ना अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि हम अपने बोलने के जो लहजा है हमारा, जो हमारे शब्द है, उनका चुनाव अच्छे से किया जाए। मनुष्य के बोलने का अंदाज उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दर्पण होता है। शब्द तो सभी बोलते हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव, बोलने का लहजा और आवाज का स्तर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, संस्कार और मानसिक स्थिति की पूरी कहानी बयां कर देता है। कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीमी गति में बोलते हैं, कुछ सामान्य बोलते हैं। हम अक्सर देखते हैं जो धीमी गति में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। ज्यादातर उनमें स्वयं के भीतर रहने की बात, या ये कह सकते हैं कि वो कम ही लोगों से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। जो ऊंचे सुर में बात करते हैं वो या तो सामने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, या उनकी आदत ऐसी बन गई है, और या फिर हो सकता है कि वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जो अपना हर प्रकार का विचार सामने वाले के सामने प्रकट करना चाहते हैं। इसके प्रकार हम शब्दों के चुनाव की अगर बात करें तो शब्द बहुत सारे ऐसे होते हैं। जब भी हम देखते हैं आसपास हमारे परिवार में, कुछ लोगों की बातों को कभी भी टाला नहीं जाता, उनकी बात हमेशा ही मान ली जाती है और हमें ये लगता है कि भेदभाव हो रहा है। हो सकता है एक माता पिता की 4 संतानें, 2 संतानें अगर हैं, उन संतानों में भी किसी एक की बात हमेशा मान ली जाती है और किसी एक की कभी नहीं मानी जाती, और हम इस बात को हमेशा इसलिए लेते हैं कि वो भेदभाव कर रहा है। लेकिन शब्दों के चुनाव का जादू है सबका सब, क्योंकि शब्दों का चुनाव, जिसकी बात मान ली जाती है उसके पास ऐसे शब्द होते हैं कि सामने वाला मना कर ही नहीं सकता, और जिसके पास शब्दों का चुनाव नहीं है अच्छा, तो फिर उसकी बात में चाहे कितना भी सार हो, कुछ भी हो, सामने वाले को वो समझ

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: श्रोताओं, अंतराल के बाद आइए अब बात करते हैं, फिलहाल जो गर्मियां चल रही हैं उनमें सनबर्न होना एक आम बात है और इससे बचाव हमें जरूर करना है क्योंकि तेज धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वो त्वचा की कोशिका को नुकसान पहुंचाती है। इससे त्वचा में लालिमा, जलन और दर्द होता है। लंबे समय में ये झुर्रियां और त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती है। इसके बचाव के लिए हमें बार बार जब हम धूप में निकले तो 15 से 20 मिनट पहले कम से कम 30 या 50 SPF वाला जो सनस्क्रीन सनब्लॉक जरूर लगाना चाहिए। अगर आप धूप में ज्यादा रह रहे हैं तो हर 2 या 3 घंटे बाद जब आपके पसीना आ जाता है उसके बाद फिर से सनस्क्रीन आपको लगानी चाहिए। सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे धूप बहुत तेज होती है, इस दौरान सीधे धूप के संपर्क में आने से हमें बचना चाहिए। अपनी बॉडी को पूरा कवर करें, पूरी बाजू के कपड़े पहने और जैसे ही धूप में निकलते हैं तो छाता जो है वो लेना न भूलें। चेहरे और गर्दन को बचाने के लिए चौड़े किनारे वाली टोपी या इससे बचाने के लिए कुछ भी जो आप उपयोग समझें उसका इस्तेमाल करें। अगर सनबर्न हो चुका है तो फिर प्रभावित हिस्से पर ठंडे पानी का तौलिया रखें या ठंडे पानी का उसमें जो है आप उसको धो सकते हैं। उससे त्वचा में ठंडक और नमी देने के लिए शुद्ध एलोवेरा जेल भी लगाया जा सकता है। शरीर को अंदर से ठंडा और हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी को जरूर पिएं। तो श्रोताओं, गर्मियों में सनबर्न से हमें बचना है, अगर हो जाए तो उपाय जरूर करने हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के बारे में। श्रोताओं,

मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है ताकि नागरिकों को समय पर पारदर्शी और निर्बाध चिकित्सा सुविधा मिल सके। ये प्रणाली को पेपरलेस बनाती है जिसमें मरीजों को बार बार रिपोर्ट या पर्ची साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका सारा मेडिकल डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहता है। मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से ऑनलाइन विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा भी मिल सकती है। इसके तहत सभी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और उन्हें आयुष्मान भारत से जोड़ा जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पे है। आपको एक और जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना का जो उन्नत करना है उसके बारे में प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना है। इसके तहत मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अल्पसंख्यकों के बीच शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक और उन्नत बनाना है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों, आवासीय विद्यालयों और छात्रावास के निर्माण व विस्तार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। युवाओं और महिलाओं के कौशल के विकास के लिए तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाता है। छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही श्रोताओं, मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च माध्यमिक कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी जाती है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और दिशा निर्देश की जांच की जा सकती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चोरू। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी

0: इसके बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
5: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है।

0: पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन

0: असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार, दैनिक जागरण में है। एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI Impact Summit in February.

0: Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Avignon in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे झलकी। विषय है रिश्ते प्यार के।
2: नाटिका की लिखी नाटिका रिश्ते प्यार के, निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।
3: ज्योति की माँ, ए ज्योति की माँ,
4: अरे क्या बात है, हाँ
5: ये इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: आ के आप,
5: अरे रो क्यों रही हो?
6: मैं क्या कहूँ, ये चिट्ठी पढ़ लो।
5: किसकी चिट्ठी है ये?
6: तुम्हारी लाडली बेटी की।
5: ज्योति की चिट्ठी? देखो
4: पूज्य डैडी, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये घर छोड़ रही हूँ, श्याम के पास जा रही हूँ, हम विवाह कर रहे हैं। चाहती थी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता, मगर माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। खैर अब जा रही हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को भुला कर क्षमा करें। आपकी बेटी ज्योति।
6: अब तो आ गया ना विश्वास। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे ये लड़का एक आंख नहीं पाता, ज्योति के साथ उसका मेल मिलाप ठीक नहीं, मगर तुम हमेशा उसके गुणगान करते रहे। आज उस चित्रकार ने हमारे मुंह पर काले पोती है काले खा।
4: मैं शाम को इतना ऊंचा आदमी नहीं समझता था। अगर वो मुझसे मेरी ज्योति का हाथ मांगता तो मैं हंसी खुशी ज्योति का विवाह उसके साथ कर देता।
6: मैं तो उस विठले के साथ अपनी फूल सी बच्ची का विवाह कभी ना करती। उसके पास रखा क्या है, न पहनने का ढंग, न बोलने की तमीज।
4: नहीं ज्योति की मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं श्याम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके जीवन का उद्देश्य है सादा जीवन, उच्च विचार। वो अपने बाप के पैसे को छूना तक नहीं चाहता। अरे अपने पिता से उसकी लड़ाई उसूलों और आदर्शों की है।
6: वो इस तरह छुप कर खत लेकर क्यों गई? मुझसे न सही, तुमसे तो अपने मन की बात कह सकती थी।
7: कौन? ज्योति इधर आ बेटी, इधर आ।
6: डैडी, डैडी। कर्मो पोटी, तुझे शर्म नहीं आई? इस घर की इज्जत नीलाम करने गई थी माँ। मारी वो लफंगा, जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ तेरा क्या होगा?
4: तू चुप भी रहेगी, गलती इंसान से होती है। वैसे ज्योति अब बच्ची नहीं है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो अपना बुरा भला खुद सोच सकती है।
6: चुप बेटी, माँ को अपना दुश्मन समझे? ऐसी लड़की के होने से तो बे औलाद भली थी।
8: मम्मी अगर ऐसी बात थी तो तुमने पैदा होते मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये खाओ ये ना खाओ, ये करो ये ना करो, यू उठो यू बैठो, जैसे मैं बच्ची हूँ, जैसे मुझे जीने का शौर ही नहीं हो।
6: देखो तो छोकरी की जबान, कैंची की तरह चल रही, कैंची की तरह। शौर इतना है तो घर की इज्जत नीलाम करने क्यों गई थी?
8: घर की इज्जत? घर की इज्जत क्या होती मम्मी? माँ और बाप 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त रहे, बेटी की क्या इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, ये जानने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। तो बेटी क्या करे, घर की चार दीवारें से अपना सर फोड़े, दिल की बात दीवारों से करे?
6: नहीं नहीं, घर छोड़कर उस निकम्मे के साथ भाग जाए, माँ बाप के मुंह पर काले पोते है।
4: ज्योति की माँ चुप भी कर, ज्योति से बात करने दो मुझे। जाओ मेरे लिए एक चाय का कप ले।
6: हाँ हाँ, मैं तुम दोनों के पीछे चली जाती हूँ।
4: हाँ ज्योति बेटी, मुझे बता तू क्या चाहती है, मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ।
8: पापा कहना क्या है, मेरा फैसला तो आप जानते हैं।
4: मैं जानता हूँ बेटी, तू शाम से विवाह करना चाहती है ना?
8: पापा।
4: पर बेटी, इस संबंध के नतीजे के बारे में भी तूने सोचा होगा।
8: नतीजों से आपका मतलब? मैं समझी नहीं पापा।
4: यही कि विवाह के बाद एक घर की जरूरत होती है और घर चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम। क्या तू शाम की तरह सादा जीवन जी सकेगी?
8: मैंने शाम को करीब से देखा है पापा, उसे समझा है। मैं हर हाल में उसके साथ खुश रहूंगी, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। आपने कभी शाम को समझने की कोशिश ही नहीं की पापा। शाम की तरह दुनिया में कितने लोग हैं जो औरों की सोचते हैं। वो हर शाम गरीबों की बस्ती में जाके उनके दुख दर्द सुनता है, वो उनके गम आंसुओं पीड़ा वेदना में हिस्सा बटाता है, उनके बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए खुशियां जुटाता है। अपने लिए तो सब जीते हैं पापा, औरों के लिए जीने वाले मुश्किल से मिलते हैं।
4: शाम को तो इतना जानती है, फिर भी तूने बुजदिलों की तरह भागने की जल्दबाजी क्यों की?
8: मैं डरती थी पापा, मैं डरती थी कि।
4: डरती थी किससे?
8: मुझे मम्मी का डर था, मुझे डर था वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी।
4: हाँ, वो जल्दी से रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, वो पुराने विचारों की एक सीधी सादी औरत है। लेकिन वो भी इंसान है, प्यार से उसे समझाती तो वो भी मान जाती। आखिर उसने तुझे जन्म दिया है, तेरा सुख ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है।
8: पापा, उनकी बातें सुनने के बाद भी आप कहते हैं कि वो मान जाती? शाम के लिए उनके दिल में जो नफरत है पापा, आप।
4: शाम के लिए उसके दिल में नफरत नहीं, ईर्ष्या है। उसकी लाडली बेटी को उससे भी ज्यादा प्यार करे, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। फिर तूने शाम के बारे में अपनी माँ को कभी हमराज भी नहीं बनाया, इसीलिए उसे लगा कि ये लड़का उसकी इकलौती बेटी को उससे दूर कर रहा है। वो अनजाने में शाम से चिढ़ गई। अगर तू अपनी माँ से शाम को मांगती तो वो तेरी खुशी के लिए खुश शाम की खुशामद करती। बेटा, वो गर्म मिजाज की जरूर है, पर तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तूने उसे समझने में गलती की है बेटा।
8: हो सकता है पापा, हो सकता है मैंने ही मम्मी को समझने में गलती की हो।
4: तूने मुझे भी गलत समझा है
8: पापा। ये आप क्या कहती हैं?
4: इस तरह घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे इस संबंध में कहा होता।
8: मैंने कहा ना, मैं डरती थी पापा, मैंने सोचा कहीं माँ के दबाव में आके आप इनकार कर बैठे तो।
4: तू बिल्कुल भोली है, तूने ना अपनी माँ को समझा और ना अपने पिता को पहचाना। और बेटी, मैं तो कहूंगा कि तूने शाम को भी गलत समझा है।
8: पापा,
4: तू जब घर छोड़कर शाम के पास गई तो फिर लौट क्यों आई? तुझे शाम ने वापस भेज दिया ना?
8: हाँ, मुझे शाम ने वापस भेज दिया। उसने कहा मुझे इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था।
4: उसने शादी के लिए इनकार तो नहीं किया ना?
8: नहीं नहीं पापा, उसने कहा ज्योति मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन इस तरह छुप कर घर से भाग कर नहीं, तुम्हारे माँ बाप की अनुमति लेकर। उसे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग अनुमति दे देंगे। उसने मुझे वापस भेज दिया पापा। वो आ रहा है आपके पास आप लोगों की अनुमति लेने।
4: ज्योति, मैं जानता था कि श्याम एक आदर्श लड़का है, वो बड़ों का आदर करना जानता है। आज अपनी मर्यादा की वजह से वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया है।
8: पापा।
9: अरे श्याम, आओ बेटा आओ।
10: पापा, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ।
4: क्षमा? कैसी क्षमा?
10: अनजाने में ज्योति ने जो गलत कदम उठाया उससे आपको कितना कष्ट पहुंचा होगा ये मैं समझ सकता हूं।
4: तुमने मेरे घर की इज्जत बचा ली बेटे, वरना लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कितनी बदनामी होती है हमारी।
10: मैं जानता हूं पापा, इसलिए आज मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं।
4: मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। पर श्याम
10: जी,
4: कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूं।
10: कहिए पापा।
4: क्या तुम समझते हो ज्योति एक अच्छी पत्नी साबित होगी?
10: हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा।
4: लेकिन बेटा, सिर्फ प्यार के सहारे जीवन नहीं कटता।
10: जी, मैं समझा नहीं।
4: ज्योति एक ना समझ लड़की है, घर गृहस्थ कैसे चलाया जाता है इसे उसका कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि उसे खाना पकाने घर के कामकाज का भी शऊर नहीं।
11: हाँ हाँ वो जाहिल है, गवार है, क्योंकि उसकी माँ एक फूहड़ औरत है। उसने अपनी इकलौती

0: नहीं सिखाया, यही कहना चाहते हो ना?
1: अरे ज्योति की मां, ये
0: मेरी ज्योति हजारों में एक है, हजारों में, क्या नहीं आता उसे? हाँ, बस तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है और अब कुछ दिनों से वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी।
2: माँ
0: छोड़ मुझे, क्षमा, मैं तेरी कौन होती हूँ? मैं तो तेरी दुश्मन हूँ। माँ,
3: माँ जी, कभी कोई माँ भी अपने बच्चे की दुश्मन
0: होती है? तू मत बोल मुझसे, तूने ही मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया, तेरे ही कारण वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। तेरे लिए वो आज मुझे छोड़ कर जा रही है, मुझे अपनी माँ को छोड़कर जा रही है।
3: मां जी, ये इसकी नादानी थी, इसलिए मैंने इसे वापस भेज दिया। मुझे ज्योति से ज्यादा आपका प्यार चाहिए, माँ का प्यार। सच कहता हूं मां जी, साल दो साल का था मैं जब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, मुझे तो उसकी सूरत भी याद नहीं। माँ के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा मैं।
0: सुना है तेरा पिता शहर का बड़ा व्यापारी है, फिर तो?
3: माँ जी, जिस बच्चे की माँ नहीं होती ना, उसका बाप भी सौतेला हो जाता है। उन्होंने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा, उनके लिए तो पैसा ही औलाद है और पैसा ही भगवान।
0: पर पैसे के बिना गृहस्थ चल भी तो नहीं सकता, यह भी तो एक सच्चाई है। इस तरह से आंखों को बंद नहीं करके बैठा जा सकता है। तुम्हारे पास है क्या?
3: मेरे पास है माँ जी, आप जैसी माँ का आशीर्वाद। मेरी पूंजी है दया, करुणा।
0: ज्योति को बड़े नाजू से पाला है मैंने।
3: माँ जी, सीता भी तो राजा जनक की बेटी थी।
1: और फिर श्याम उसे ब्याह कर वनवास नहीं ले जा रहा है, वो सादा जीवन बिताना चाहता है और सादगी कोई गुनाह नहीं है।
0: मैंने ज्योति के विवाह को लेकर कितने सपने बुने थे।
1: ज्योति की माँ, अब तुम्हें हालात के मुताबिक अपने को बदलना होगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे।
3: काश मेरे डैडी भी आपकी तरह होते।
1: तुम्हारे डैडी को मैं समझाऊंगा, मैं लड़की वाला हूँ भाई।
3: नहीं, वो आपके साथ सौदेबाजी करेंगे, हजारों रुपए दहेज में मांगेंगे। उन्हें जिंदगी में केवल पैसा चाहिए, पैसा। पैसे के लिए वो मुझे भी नीलाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
1: मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारे पिताजी जितना दहेज मांगेंगे दूंगा।
3: नहीं पापा, मैं खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें विवाह का निमंत्रण भेजूंगा, चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद पा सकूं।
1: हम शादी धूमधाम से करेंगे।
3: नहीं पापा, नहीं, मैं आपको कोई फजूल खर्ची नहीं करने दूंगा।
1: अच्छा चलो, एक बढ़िया सी पार्टी कर देंगे, क्यों ज्योति की माँ?
0: मैं तो दुश्मन हूँ इनकी, मुझसे क्या पूछते हो?
3: अगर आप नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूंगा मां जी। माँ को नाराज करके मैं कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहता।
0: लेकिन मैं फकीरों की तरह रूखी सुखी शादी नहीं करूंगी। हाँ, कम से कम बारातियों को मीठा नमकीन तो देना ही होगा।
3: पर जानती है मां जी, मेरी बारात में कौन लोग आएंगे? मेरी बारात में होंगे बस्ती के गरीब लोग, अनाथ बच्चे। मेरी रिश्तेदारी तो उन्हीं लोगों से है मां जी।
1: लेकिन श्याम,
0: आपको बीच में बोलने की बुरी आदत है, चुप रहिए।
1: पर ज्योति की मां, शादी में रिश्तेदारों को?
0: रिश्ते खून के नहीं, प्यार के होते हैं। आज ये बात मुझे श्याम बेटे ने अच्छी तरह समझा दी, मेरी अपनी जाई ने मुझे नहीं समझा, मगर ये इसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, उससे तो मेरा दिल भराया।
1: अच्छा ही हुआ, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
0: आप चुप रहिए, दामाद और सास के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं?
1: जी, मैं इस दामाद का ससुर और इस सास का पति और इस घर का मालिक।
0: मालिक? वो किसकी इजाजत से?
1: इस घर की मालकिन, यानी तुम्हारी इजाजत से।

0: रिश्ते प्यार के, इसके लेखक थे विष्णु भाटिया और जिन कलाकारों ने इस नाटिका में भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं, मोहिनी शर्मा, सविता बजाज, विजय सूरी और शिवराज, सहायक कुमारी परवीज, प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।
1: आप सुन रहे थे झलकी, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 8:45 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से समाचार तरंग। 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: समाचार तरंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: मैं हूं आपके साथ सलेहा। श्रोताओं, जैसे जैसे हम 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, पूरे देश में योग के प्रति जागरूकता और उत्साह का माहौल भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरज जैफ, वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग और प्रभारी अधिकारी योग ओपीडी एसएमएस अस्पताल जयपुर। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में आकाशवाणी स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि योग किस तरह हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाता है।
1: योग हमारे प्राचीन समय की विधि है जो हजारों हजारों साल के ऋषियों की रिसर्च के बाद में उन्होंने योग का आविष्कार किया। योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक मार्ग रहा है जो एक ईश्वर प्राप्ति का साधन रहा है, पर अभी वर्तमान में आध्यात्मिक के साथ में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अति आवश्यक है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करके ये बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है कि योग स्थापित हुआ है और जो हमारा योग है वो हमारे पास ही रहा, बाहर नहीं गया है। नहीं तो बाहर से जाके रिटर्न होके जब वहाँ से आता है तो योग से जैसे योगा हो गया योगा से, पर वो नहीं रहा कि आज योग हमारे देश में वापस से पुनः स्थापित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण से, और ये योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
0: डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग का ये 11वां संस्करण है और पूरी दुनिया में ये एक वैश्विक स्वास्थ्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो खुद को सेहतमंद और चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही योग की प्रासंगिकता आज के जीवन में पहले से ज्यादा क्यों हो गई है?
1: अभी हमारी जो जीवन शैली है, कम्पिटेटिव युग है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है हर चीज के लिए आपको, और आर्थिक युग हो गया है, तो इस युग में भागदौड़ बहुत हो गई है, समय व्यक्ति के पास कम है, तो कम समय के लिए योग सबसे लाभप्रद है कि आप कम समय में कम संसाधनों से आप स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए। और दूसरा जो स्ट्रेस, उसमें योग बहुत ही लाभकारी है, तो शारीरिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आज के संदर्भ में योग बहुत महत्वपूर्ण है।
0: सर, आयुष मंत्रालय की ओर से इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है उसे रखा गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, और योगा फॉर हेल्दी एजिंग के साथ ही 15 जून से 21 जून तक पूरी तरह से योग सप्ताह को ही, इस सप्ताह को योग सप्ताह के रूप में डेडिकेट किया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं?
1: योग के बारे सब लोग जानते हैं, पर जैसा कि मनुष्य की प्रकृति है कि वो धीरे धीरे उसको भूल जाता है, इसलिए ये योग सप्ताह है तो वापस से पुनः उसको याद दिलाने के लिए कि योग जीवन के लिए कितना लाभप्रद है, और जो लोग अब तक योग से नहीं जुड़े हैं नए लोग, उन लोगों को जोड़ने के लिए ये योग सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो शिथिलता काम करते करते जीवन में, सामान्य जीवन में शिथिलता आ जाती है, थोड़ी स्लोनेस आ जाती है, उसको वापस से स्थापित करने के लिए, वापस से जगाने के लिए योग सप्ताह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं।
0: और योग सप्ताह के अलावा ही 100 दिन पहले ही काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कई जगह सामूहिक योगाभ्यास शिविर लगाए जाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है अकेले की बजाय अगर मिलजुल

0: या सामूहिक रूप से योगा अभ्यास करें तो थोड़ी मोनोटनी भी ब्रेक होती है और वो दिलचस्प भी लगता है।
1: निश्चित रूप से योग अकेला जब व्यक्ति रोज करता है तो करते करते एक मोनोटोनसता उसका हो जाता है, तो जब सामूहिक योग करते हैं और जब साथ में योग करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे से आपको सीखने का मिलता है और आपका जो आलस्य है वो दूर रहता है, इसलिए सामूहिक योग करना चाहिए बीच बीच में ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि तनाव और चिंता हमारी जिंदगी का हिस्सा ही हो गई है और बहुत दौड़ती भागती जिंदगी है, ऐसे में इन समस्याओं का समाधान अगर खोजें तो उसमें योग कितना प्रभावी है?
1: देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि योग एक आध्यात्मिक मार्ग रहा है, पर वर्तमान में देखें तो आध्यात्मिक के साथ में पुराने ऋषि मुनि इसलिए योग करते थे कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक साधना करें, इसको साधना करें, इसलिए ये हेल्थ है, योग का एक बाय प्रोडक्ट है। इसके द्वारा हम जो स्ट्रेस है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको प्राप्त करने में योग अति महत्वपूर्ण है। जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसके लिए बहुत ही ये लाभप्रद है। और जो आज की जीवन शैली है उसमें कम समय में और स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि जीवन में आप थोड़ा बहुत भी समय निकाल पाते हैं, प्रतिदिन 15 से 20 मिनट भी कुछ प्राणायाम आप कर पाते हैं, मेडिटेशन आप नियमित कर पाते हैं, तो आपको स्ट्रेस कम करता है और आपकी जो कार्यशैली है और आप उसमें वृद्धि करता है।
0: डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बार बार एम्फेसिस किया कि ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि इससे मानसिक स्पष्टता भी आती है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ और भावनात्मक संतुलन में भी ये बहुत ही मददगार है, लेकिन कुल मिलाकर आती है बात अनुशासन की, तो इसके नियमित रूप से करने पे ही इसके फायदे सामने आते हैं, तो किस तरह प्रेरित किया जा सकता है नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, कि वो उनका रुझान योग की ओर बढ़े?
1: निश्चित रूप से जो अपने साप्ताहिक कार्यक्रम ये करते हैं तो उससे नई पीढ़ी को रुझान मिलता है, उसको एक मार्ग मिलता है और उसको हम बार बार उसको ये समझाने की आवश्यकता है कि, और वो समझ भी रहे हैं, आज के नई पीढ़ी वाले योग भी बहुत करें कि उनके पास समय कम है तो योग करते हैं और योग उनके लिए लाभप्रद भी हो रहा है। तो दुनिया में कोई भी व्यायाम ऐसा नहीं है जो तीनों स्वास्थ्य आपको एक साथ देता हो, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, तीनों स्वास्थ्य आपको एक साथ मिलते हैं। बाकी आप जिम जाते हैं तो शारीरिक आपकी हेल्थ ठीक रहती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, पर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो योग एकमात्र है। तो उसको नियमित करने से एक तो डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है योग के लिए कि नियमित योग करना चाहिए। जब आदमी एक बार योग शुरू कर प्रारंभ करता है तो प्रारंभ भी लगता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे करते जब उसको आनंद आता है, नियमित करता है, तो एक समय एक तय होना चाहिए आपका, अर्ली मॉर्निंग आपको घर से निकलने से पहले आप योग करें। कुछ लोगों समय नहीं मिलता, श्यामकाल भी भोजन से पहले योग कर सकते हैं, पर तो प्रातःकाल योग करना ठीक रहता है, फ्री रहते हैं, आपका शरीर ठीक रहता है, मन भी शांत रहता है, तो एक समय तय करें और नियमित योग करें। योग निरंतरता है, योग आराम से करने की चीज़ है, योगासन स्नेह आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना, इसलिए हरी और करी ये इसमें नहीं चलेगा। योग को आराम से करना है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ में करना, आनंद के साथ में करना है, तो योग का बहुत ही लाभ प्राप्त होगा।
0: जी, अभी अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सी बीमारियां भी हमारी जीवन शैली का एक तरीके से हिस्सा ही बन गई है, चाहे वो हृदय रोग की बात हो, मधुमेह हो या मोटापा हो, हम इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, तो ऐसे में इन बीमारियों के दुष्प्रभाव हैं, उन्हें कम करने में योग की क्या भूमिका है?
1: जैसे मैंने अभी कहा कि हरी और करी, हमारा खान पान भी करी हो गया है और बहुत जल्दबाजी में है, तो ये लाइफ मॉडिफिकेशन जब हुआ है तो ये सारी डिजीजेज हमारी लाइफ में आई हैं प्रोग्रेस के साथ में, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और बहुत सारी जो कैंसर वगैरह है, ये सारा खानपान से हमारा और अपने रूटीन से सारी डिजीज, स्ट्रेस हमारा बहुत बड़ा है, डिप्रेशन बहुत बड़ा है, ये सारी जो बीमारियाँ हैं पहले कभी नहीं थी, अभी बीमारियाँ बढ़ी हैं, तो निश्चित रूप से योग उसमें बहुत लाभप्रदक है। माइग्रेन की समस्या बहुत बढ़ रही है, ऐसे में हम योग उपड़ी में मरीज हमारे पास आते हैं, उनका नियमित इलाज भी करते हैं, रिसर्च भी करती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ी है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, तो इनमें योग बहुत फायदेमंद है। नियमित योग करने से, प्राणायाम करने से, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करने से और कुछ आसन हैं पर्टिकुलर डायबिटीज वगैरह में, पर इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं कि आपने टेबलेट खाई, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, आपका ब्लड शुगर ठीक हो गया, ऐसा नहीं, बहुत समय चाहिए, धैर्य चाहिए। निश्चित रूप से ये प्रिवेंशन भी है, यदि आप पहले से कर रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी और यदि हो गई है तो उसको क्योर कर सकते हैं, कुछ दवाइयां आपकी डॉक्टर सलाह लेके उसकी डोजेस कम हो सकती हैं, मेंटेनेंस में उसमें बहुत लाभ मिलता है, तो इसलिए ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, योग उसमें बहुत ही लाभदायक है।
0: यानी कुल मिलाकर ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब, आपने समग्र स्वास्थ्य की बात कही, तो क्या नियमित योगाभ्यास करने से इन दवाइयों पर निर्भरता भी कम हो सकती है?
1: निश्चित रूप से जैसे डायबिटीज है तो

0: पेशेंट यदि अपने खान पान पर ध्यान रखे, मीठा या शुगर कम रखे, तो निश्चित रूप से जो दवा ठीक रहती है, और यदि वो उसका घूमना फिरना रेगुलर है, व्यायाम इसका निश्चित एक मापदंड पे रहता है, और यदि योग करता है, देखिए योग में क्या होता है, निश्चित एक आसन वगैरह हैं वो अच्छे रहते हैं, तो इसमें डेफिनेटली दवाएं कम हो सकती हैं और लाभ मिलता है उसमें।
1: डॉक्टर साहब, अभी हमने नई पीढ़ी की बात की और हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर आजकल के युवाओं को तनाव हो जाता है, चाहे पढ़ाई का हो या कॉम्पिटिटिव एज की बात करें या करियर को लेकर, और अवसाद में भी चले जाते हैं। ऐसे में योग इनकी किस तरह मदद कर सकता है?
0: देखिए, कुछ प्राणायाम करें, कुछ शारीरिक व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, और मेडिटेशन करें, और कम समय में आप आजकल वर्क स्पेस पे भी योग कर सकते हैं, आप जो सीट पे बैठे बैठे या कुछ सूक्ष्म व्यायाम अगर कर सकते हैं, बीच बीच में जिनके लॉन्ग सेटिंग रहती है, बहुत स्ट्रेस का काम रहता है, वो टारगेटेड इनका रहता है, तो वहाँ भी आप ऑफिस में भी योग कर सकते हैं, आजकल ऐसे चल रहा है, तो बीच में आप कुछ समय रिलैक्स कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, खाने के 2 घंटे बाद कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, खाने के ठीक बाद नहीं करें, सुबह मॉर्निंग में करें, तो थोड़ा समय अपने को निकालना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि यदि आपको लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो आपका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, कि पहला सुख निर्गुण है, बाकी सब व्यर्थ है माया। तो यदि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप कितनी भी हैं एनर्जेटिक हैं तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए योग को लाइफ में अपनाइए और स्वस्थ रहिए।
1: इसके साथ ही आपने बात की कि चाहे योगासन हो या फिर श्वास व्यायाम हो या फिर संक्षिप्त ध्यान, अगर सुबह समय नहीं मिलता तो इन्हें दिन में किसी भी समय किया जा सकता है।
0: निश्चित रूप से कि प्रातःकाल का समय ठीक रहता है, आपके पास समय रहता है, घर से निकलने से पहले आप फ्रेश रहते हैं, पर कोई बात नहीं, यदि प्रातःकाल नहीं कर पाए तो आप इवनिंग में जब वापस आप घर पे लौट के आए तब भी आप भोजन करने से पहले आप कर सकते हैं, और वहां भी समय नहीं मिले तो आप ऑफिस में जब भी समय मिले आपको खाने के तुरंत बाद नहीं करें, खाने के 2-3 घंटे बाद में कुछ प्राणायाम है, दीर्घ श्वसन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और कुछ देर का ध्यान है, आप बैठिए, आप बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो जब भी आपको समय मिले योग कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ में बनाए कि नियमित योग करना है तो सब ठीक रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देंगे कि क्या इसे ऑनलाइन सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है, या इन पर्सन जाने में ही इसका ज्यादा फायदा है?
0: देखिए, ऑनलाइन में आप एक मार्गदर्शन ले सकते हैं, एक आपको आइडिया मिल जाता है, पर बिना गुरु के आप योग नहीं करें। ऑनलाइन देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कई आते हैं कि सर हमने ये आसन किया था, हमारे बैकएक हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम होगी, हेडेक हो गया, इसलिए ऑनलाइन नहीं करें, किसी भी योग्य गुरु के सानिध्य में योग सीखें, फिर योग आपको करना चाहिए।
1: योग को लेकर कई तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं, हाल ही में हवाई यात्रा के लिए भी योग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे यात्रा संबंधी तनाव कम होता है, कई बार रक्त संचार जो बढ़ जाता है उसमें भी सुधार होता है, तो इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्या हवाई यात्रा के दौरान भी योग से सहायता मिलती है?
0: योग आप कहीं भी कभी भी कहीं कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। हवाई यात्रा में यदि आप जा रहे हैं तो दीर्घ श्वसन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और श्वास क्रियाएं आप कर सकते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं, स्ट्रेस आपको रहता है उसमें तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, कोई एंजाइटी रहती है, कुछ को फोबिया रहता है, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, और कुछ हाइट पे जाने पे कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसमें प्राणायाम वगैरह ये मेडिटेशन बहुत निश्चित रूप से लाभकारी है।
1: सर, एक सवाल ये रहेगा कि क्या अलग अलग आयु वर्ग के लिए या पुरुष और महिलाओं के लिए भी योगासन कॉमन है या इसमें भी कुछ फर्क होता है?
0: देखिए, 8 साल की उम्र के बाद में बच्चा जब खेलता तो ठीक है, 8 साल के बाद में 60 साल तक आप कभी भी जब आपका शरीर काम कर रहा है तो आप योगासन आप कर सकते हैं। कुछ आसन हैं जो महिलाओं के लिए वर्जित हैं, जैसे मयूरासन वगैरह है, तो वो ऐसे आसन महिलाओं के लिए वर्जित है, बाकी और सब आसन कर सकते हैं, तो कुछ वर्जित आसन वो नहीं करें महिलाएं, और मासिक धर्म के समय कुछ आसन से आपको वो नहीं करने चाहिए उस समय, बाकी पूरे समय में ऐसा जेंडर बायस नहीं है कि वो मेडिटेशन भी कर सकती हैं, योग भी कर सकते हैं, पर जो आसन से है जो उनसे नुकसान हो सकता है वो आसन नहीं करें।
1: और अंत में हम आपसे ये कहेंगे कि स्वस्थ और संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए योग की बड़ी भूमिका है, इसे लेकर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जैन, मैंने अभी कहा कि यदि आप निरोगी हैं तो ठीक है, इसलिए पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब व्यर्थ माया, इसको ठीक कर ले रे भाया, नहीं तो बिगड़ जाएगी तेरी काया।
1: बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक अंदाज में आपने अपना संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। हमारे अतिथि डॉक्टर धीरज जैफ का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों से, अपनी बातों से हम सभी को समृद्ध करने के लिए। और श्रोताओं, आप

0: ये अपील है कि योग दिवस 2026 पर हम सब मिलकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर सकारात्मक कदम बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ अनुमति आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। होर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
3: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
2: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके।

0: बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 700 शी मार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन शी मार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी, सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मॉनसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
1: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलौदी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सिरोही में सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आमजन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए हैं, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह

0: से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने, और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: 107 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं। समय 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशकांत।

आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। समय 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी कव्वाली, कार्यक्रम महफिल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महफिल। आप सुन रहे हैं बरसात की रात फिल्म की एक कव्वाली, मन्ना डे, मोहम्मद रफी और बत्तीस सुधा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी कव्वाली का कार्यक्रम महफिल। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक।

सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम चित्रलोक में मैं हूं आपके साथ रेडियो साथी अंकिता। कार्यक्रम चित्रलोक जो कि एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अभिनेत्री और गायिका सुरैया के बारे में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में हम बात कर रहे हैं गायिका और अभिनेत्री सुरैया के बारे में। श्रोताओं, सुरैया हिंदी सिनेमा की महानतम गायिका और अभिनेत्री थी। 1940 और 1950 के दशक में वे भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक वेतन पाने वाली स्टार थी। आपको पता है, उन्हें मल्लिका ए तरन्नुम यानी मेलोडी की रानी भी कहा जाता था।

0: जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक में अभिनेत्री सुरैया की। श्रोताओं, अभिनेत्री सुरैया या गायिका सुरैया एक बाल कलाकार के रूप में 1942 में फिल्म शारदा से अपने अभिनय की शुरुआत करती हैं। उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो उसमें अनमोल घड़ी, दर्द, प्यार की जीत, दिल लगी, बड़ी बहन और मिर्जा गालिब शामिल है।

0: जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम चित्रलोक में हम बात कर रहे हैं गायिका और अभिनेत्री सुरैया के बारे में। सुरैया ने अपने करियर में 67 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 330 से अधिक गाने गाए। उन्होंने खुद के लिए, पार्श्व गायन और कई अन्य अभिनेत्रियों के लिए भी मधुर गीत गाए।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम क्षेत्रलोक। आज हम बात कर रहे हैं सुरैया के बारे में। श्रोताओ, ऑन स्क्रीन जोड़ी इनकी देवानंद के साथ काफी मशहूर थी, लेकिन सुरैया ने आजीवन विवाह नहीं किया और एकांत जीवन बिताया।

श्रोताओं, मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। आज हम इनकी बात कर रहे हैं। आज 15 जून है और 15 जून 1929 को हुआ था इनका जन्म।

श्रोताओं, सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को हुआ। उनका जन्म अविभाजित भारत में पंजाब के गुजरांवाला, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी चित्रलोक, एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे थे अभिनेत्री और गायिका सुरैया के बारे में। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। ये आकाशवाणी का शुरू केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छा।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं।

0: वो भजन भगवान के भजन है. हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था.
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है.
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
0: बहुत बार. माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी.
1: अच्छा.
0: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी. हम गाते थे.
1: अच्छा.
0: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि वो हमको बहुत अच्छा लगता था.
1: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें.
0: जरूर सुनवाइए.

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी।
0: हा, हा, हा।
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा।
1: जो जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको

0: ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था। जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना,
1: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
0: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
1: जी,
0: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
1: हाँ, लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
0: मैं
1: आपकी
0: तो बड़ी
1: भी
0: हो
1: अपनी
0: गई थी।
1: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
0: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
1: भीतर
0: वो फिर
1: होता है,
0: गर्व
1: वो
0: महसूस करने
1: महसूस
0: लगे।
1: किया। मितुल जी, कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
0: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
1: जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
0: हाँ,
1: ने?
0: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं
1: हाँ
0: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
1: खूबसूरती
0: कि
1: के
0: मेरे
1: साथ,
0: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन
1: कौन
0: हो,
1: हो?
0: बोलो तुम
1: आहा,
0: कौन हो।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
1: जी।
0: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
1: तुम
0: तुम।
1: थे,
0: हाँ,
1: आहा,
0: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
1: क्या मेरा
0: क्या
1: प्यार
0: मेरा
1: पसंद है
0: प्यार
1: तुम्हें
0: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
1: बहुत
0: गीत है
1: बहुत स्वीट।
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत है
0: हर
1: ये, हर
0: पल के। तो
1: मौके
0: ये
1: के गीत है
0: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
1: जी
0: लिखे
1: जी
0: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला, और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जनजन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये रुमानियत
1: गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सबने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हील चेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था
1: जी।
0: और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया।

0: उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं।
1: जी
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया,
1: जी
0: वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उसपे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून।
0: हाँ,
1: काले नहीं, सफेद
0: सफेद।
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका।

0: क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा?
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी मित्तल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी।
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया, तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती है नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा, हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
0: जी, जी।
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
0: अच्छा।
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
0: जी,
1: गई
0: जी।
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे

0: मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया।
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: सुख

0: तो कभी था।
1: मिथुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती है। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया, कोई भी सफेद रंग का कोई भी, हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन, जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते।
1: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है

0: उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा है, अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं,
1: ऑयल पेंटिंग
0: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर, उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है। आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
0: वही तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
0: आपको आर्ट... आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
0: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
0: नहीं।
1: अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है,
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत
0: जी। ऊपर

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहे, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं, या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कॉन्सेंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए, तो उसके लिए पोर्ट्रेट है। चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बना

0: आती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं, तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
1: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का, सभी तरह के
0: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना, पुराने वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपना पेंटिंग बनाइए।
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
1: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं,
1: रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितनी कुत्ते पाले?

0: रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही
1: है? हाँ जी।
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत, मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ,
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम है।
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन टिन है तो दूसरा है चिन चिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, सो ये सभी बिल्लियां आपका कहना मानती है?
1: हाँ हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर सुन।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल
1: जी
0: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की बातचीत बस यहीं तक, अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंग पिया है वहाँ से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। उमंग एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे शंकरलाल सिहाग और उनके साथी। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे दिन में 1:00। 1:05 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी दिल्ली से मिडडे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2:00 और दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर। आज दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 6 बजे हिंदी में, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचारों में शाम 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी जयपुर से जिले की चिट्ठी रिले की जाएगी शाम 6:40 पर। खेती और गृहस्थी, ये कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का प्रोग्राम गुलदस्ता। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा रात 8:45 पर और रात 9 बजे News@9। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी चूरू से राजस्थानी लोक संगीत।

पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर। रात 10 बजे आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी जयपुर से रिले खेल जगत। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी चूरू से सुगम संगीत, और सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाजों में। चांदनी फिल्म के इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया शिव हरि ने।

गीत लिखा है इंदु जैन ने और संगीतबद्ध किया है राजकमल ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी चुरू से FM 100.7 MHz पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत। इस वक्त आपके रेडियो सेट पर है नसीब फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर, डॉक्टर कमलेश अवस्थी और अनवर की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दिलीप ताहिर की शब्द रचना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। राम लक्ष्मण का संगीत है और फिल्म का नाम है 100 डेज।

वरुण ग्रोवर की शब्द रचना को आप सुन रहे हैं अन्नू मल्लिक की धुन पर। पापोन ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है दम लगा के हर्षा।

ये थी अरिजीत सिंह की आवाज और संगीतकार जीत गांगुली का, गीत सईद कादरी का और फिल्म थी खामोशियां। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।

अब आप सुनेंगे भूपेन हजारिका की आवाज़ में रुदाली फिल्म का गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है भूपेन हजारिका ने।

छोला छोला भूख मिटाए दे प्यास हटाए दे खाली है पेट का झोला वो झोला झोला वो झोला।

कटोला जिंदगी की आग में काहे को जलाती हो कागजी शरीर का चोला ओ चोला भूख मिटाए दे।

लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
0: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा आ गया है, बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
0: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
0: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
0: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी सी

0: कैंची से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने

0: जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे! ओह!
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो...
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
1: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
1: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
7: अप्पू!
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
7: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
7: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
7: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
7: मैं अभी किसके बारे में

0: मैं बता रहा था
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
0: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
0: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
0: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
0: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लो।
2: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में

0: चिकोटी काट ली।
1: ओए
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
4: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: श्याम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया।

0: फर्स्ट क्लास कंचे।
1: तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?

0: ही उनके लिए खरीदने आया होगा।
1: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
1: दे दो।
2: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
1: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
4: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग,
5: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर

0: भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज आपने सुना शंकरलाल सिहाग और साथियों को। कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सोमवार से खुल जाएगा। विश्वभर से प्रमुख नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिमी एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

0: कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सुश्री सीतारमन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर में शुरू होगी। प्रदेश में नहरों के जीर्णोद्धार और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जायका प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन कार्यों में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख नोहर और भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत और रीलाइनिंग के काम किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से नहरों की जल वहन क्षमता में सुधार होगा और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी तेजी से पहुंच सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इन स्वीकृत कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा झालावाड़ के खानपुर इलाके में दर्ज हुई। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़, झालावाड़ के पचपहाड़, छीपा बड़ोद, चौमू, मांगरोल, छबड़ा और बसवा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कल जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई स्थानों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में 41.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी और तिलस्वा महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीप दान कर समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं बाड़मेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का सिलसिला दिन भर से जारी है। तीर्थराज पुष्कर में आज पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सरोवर में स्नान करते समय गहरे पानी में गए एक युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अजमेर जिले के जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी के रपट पर एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चौथ का बरवाड़ा के पास मिर्ची से भरे एक ट्रक के त्रिलोकपुरा अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भरतपुर के बयाना स्थित दरबारहना झरने के नीचे पिकनिक मना रहा एक युवक गहरे पानी में चला गया जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन का 1:05 हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगण सुनण हाळी सगळी श्रोता भेणारो घणे मानसून स्वागत है थारा आपरे कार्यक्रम घर आंगण मायने। और बहनों आज के ई घर आंगण कार्यक्रम रे मायने थासु बतलावन करने वास्ते मैं उपस्थित हूँ थारी बहन विनोद। तो स्वीकार करो मेरे कानी से मोकला मोकला राम राम। ई कार्यक्रम रे मायने बहनों आपां ढेर सारी बातां करांगा, सातरा सातरा लोक गीत भी सुनांगा, जानकारियां लेवांगा। ए कार्यक्रम है जो आपको और आपनो कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम के माध्यम से आपसे हर रोज में मिलन भी आवा हाँ। और आज का ये कार्यक्रम की शिरकत में रेवेला कि गर्मी रे मौसम रे मायने पालतू जो का पशु है बारी देखभाल है बापा की कर करा सागा ही आपा चर्चा करांगा कि जल है तो कल है। ये बात ने आपा जाना भी समझा भी समझावा भी। एक और आपा चर्चा करांगा बा है कि बचावा आपा खुद ने जो का मिलता जुलता उत्पाद है बाकी धोखाधड़ी सू। तो ये जानकारियां से के साथ ही वही कार्यक्रम के मायने आपा चर्चा भी करांगा। पर पहले सुनाओ लोकगीत।

गर्मी है जो कि बड़ी जोरा पर है भेनो, और ये गर्मी रे महीने जे लारले दिन आपा देखियो कि घणी तेज लुआ है जो कि चाली ही ए लुआ अति जोर की ही के जका पक्षी है वे आपके आसरो ढूंढ बातानी पेड़ा की छाया और जगह जगह जठे भी बने छाव मिले बठे जार आपनो जुको दिन है जुको गुजार रहा। तो चाहे पशु पक्षी हो चाहे मिनक हो जद बात आवे है गर्मी से बचने की तो सबने सब

कोई दिखे है छाया, और छाया जद मिल जावे है तो मिनक है जको लुआ सू भी बचे है, साथ ही साथ एक राहत की सांस लेवे है। जदी बड़का कया करता का मिन खारी माया एर रुखारी छाया, छाया हुए जिकी रुखा की हुए यानी पेड़ पौधा री हुए। जठे जठे दरखत हुएगा वे मिनखा ने और पशु पक्षियां ने सब ने ही आपकी छाया है जिकी उपलब्ध करावे। तपती दोपहरी में भीषण गर्मी में एकमात्र सहारो है जका ए पेड़ ही हुए है। तो आपा प्रण करा कि पेड़ है जका आपा बरसात के मौसम रे मायने जरूर लगा सिया ताकि वे अच्छी तरह पनप जावे। बात करा अपने पशु पक्षियां की मवेशियां की, तो मिनख तो कहीं जया आपको जाप तो कर ले है, पर ए जका ढोर है पशु है आ की सारी जिम्मेदारी है जिकी आपा जब पाला हाँ तो पालन हार की हुए है। जब आपा घर में दुधारू पशु रखा हाँ और दूसरा भी जका व्यापार के लिए व्यवसाय के लिए पशु पक्षी रखा हाँ तो बाकी भी आपा ने विशेष देखभाल करने की जरूरत हुए है। घर के मायने आपा गाय रखा हाँ, भैंस रखा हाँ, बकरियां भी हुए हैं, भेड़ भी हुए हैं, जका ए मवेशी है अपनी आजीविका को सहारो भी बने है। आपा ने दूध दही छाछ मक्खन देने के साथ ही साथ है और भी कई प्रकार से लाभ आपा ने पहुंचावे है। ए जगह आपा भेड़ बकरियां रखा हाँ तो ए अपनी आमदनी को जरियो भी बने है। लेकिन आके साथ ही जे आपा आकी विशेष तौर पर या देखभाल ना कर पावांगा या यूं कहवा कि आकी अगर आपा खेचल ना कर पावा तो ए भी आपको पूरो फल है जो को आपा ने देख को नहीं पावांगा। चाहे बात भेड़ बकरियां की हो, पशु पक्षियां की हो, गाय भैंस की हो, आकी उचित देखभाल की व्यवस्था जरूर आपन करनी चाहिए। गर्मी का दिना का महीने जब बेड़ा लू चालन लाग जाए है तो आपा देखा कि गाय भैंस है आंको दूध है वो भी कम होने लाग जाए है, घटन लाग जाए है, क्योंकि गर्मी भयंकर जद पड़े तो पशु ना ढंग से चर पावे और ना ही पानी पी पावे। जद वाको चरनो और पानी पीणो ही ढंग से ना हो पावेगो और तो वह दूध है जो को उत्पादन है वो भी घटेगो ही। इस वास्ते जे आप आके थोड़ी सी चोखी देखभाल करा खेचल करा तो ये आपके दूध के माध्यम से आपने लाभ पहुंचावेगा। तो जद गर्मी पड़े बहुत तेज तो आप देखा कि धरती है जो कि तपन लाग जे है, माटी ताती हो जाए है, इसी ताती माटी के मायने जे पशु बंध्या रहेगा तो आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगो। दूध के मायने भी गर्मी को असर आवेगो एर आप पशुओं ने जरूरत हुए छाया की, ठंडक की। तो आपा आके लिए एक पशुओं के लिए इसो आपा व्यवस्था करा, ढारो बनावा बे कमाई ने पंखे की व्यवस्था करा। बहुत तेज गर्मी पड़े तो आपा ने कूलर की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि ये गर्मी में हल्के नहीं, और ये हल्केगा नहीं तो आपको जिस जी सोरो रहेगो तो ये दूध भी चोखो देवेगा।

पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि

0: केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पानी के बिना जीवन है जो को संभव को नहीं। आ बात अपास हर एक मिनख है जो को जाने है कि जल है तो ही कल है, यानी कि जब अपने कन पानी है तो ही आपा जी पावांगा। ये वास्ते पानी है एक ही महत्वता आपा ने समझनी भी है, खुद भी समझनी है और दूसरा भी समझानी है। पानी है जो को अपने जीवन जीने के लिए, खेती के लिए, पशु पक्षियों के लिए और पर्यावरण के लिए घणो जरूरी है। अगर आज आपां पानी ने न बचावांगा और भी न बर्बाद करता रहांगा तो आगे आने वाले टाइम के मायने आ एक गंभीर समस्या है जो कि आपने सामने खड़ी हो जाएगी। आज भी आपां देखा कि आपने राजस्थान रे मायने कठे कठे जमीन के नीचे पानी है जो को तो एकदम से सूख गयो है, कुआ सूख गया ही और कठे कठे तो जमीन के नीचे पानी सूख के गड्ढों तक हो गयो है। जमीन धसने की समस्या है जो कि भी आपने देखने मिले है, क्योंकि जब पानी खत्म हो जाए तो वे खाड़ा है जका का मायने थोथा हो जाए और थोथा है जका नीचे बैठन लाग जाए। तो ए जमीन धसने को एक बड़ो कारण है कि बैठे पानी है जको निमड़ गयो है। तो आपां यह देखा कि जब अंधाधुंध पानी को दोहन हो रहा है तो एक न एक दिन पानी है जो को धरती के जो मायने पानी धरती के अंदर एक पानी को भंडार है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गयो है। बहुत सी जगह आप देखा कि सिंचाई के लिए बना एड़ा कुआ है जका सूखन लाग गया है, पानी है जो को कम हो गयो है और दिन प्रतिदिन यह कुआ है जका गहरा कराता कराता पानी की पूर्ति को नहीं हो पावे है। अगर आने वाले टेमा में आ समस्या है जो कि और भी बड़ी हो सके है जे आपा टेम पर न चेत्या तो आपा ने चेतनो जरूरी है और एक विषय के ऊपर आपा ने गंभीरता से विचार करने की भी जरूरत है कि पानी को संरक्षण आपा ने के हिसाब से करनो है। तो कुछ आपा छोटा छोटा कदम बढ़ावा तो एक शुरुआत हो सके जल संरक्षण की, अरे छोटा छोटा कदम मिलके ही एक बड़ी मुहिम है जो कि बन सके है। ये वास्ते आपने प्रयास करना चाहिए कि आपा आपने सारू थोड़ो थोड़ो प्रयास भी करा तो एक बड़ी मुहिम है जठे ताणी आपा पहुंच सकांगा और पानी की बर्बादी है जो कि रोक पावांगा। सब पहले तो आपा अपने घर के मायने ध्यान देवा कि घर के मायने कठे आपने लीकेज तो नहीं है, कठे कोई टूटी है जबकि टपकन तो नहीं लाग रही है, कठे कोई नल खराब ना हो गयो है, कठे कोई पाइप में रिसाव तो ना हो गयो है। तो ये चीज को आपने विशेष तौर पर अपने घर के मायने ध्यान करना है, आस पड़ोस में भी देखना है कि कोई के घर नल को लीक होने की या पानी टपकने की जो आपने समस्या दिखे तो वन भी समझावा और खुद भी इस समस्या ने ठीक करावा। तो नला और पाइपा से होने वालों जो को रिसाव है भी ना आपने तुरंत रोकने की जरूरत है। यो हर दिन कई लीटर पानी है जो को बर्बाद कर दे है। फिर आवे बरसात को पानी, तो ये बरसात का पानी ने संरक्षित करने के लिए आपा कई प्रकार का उपाय है जका कर सका। घर का मायने आपा कुंड बना सका हाँ, साथ ही जब बरसात हो तो भी पानी ने आपा ड्रम का मायने भी आपा रोक के रख सका, गड्ढो बना के रोक सका हाँ, ताकि आपा पेड़ पौधा ने भी पानी दे देवा, ये पानी ने आपा फल सब्जियां उगाने में काम में ले सका हाँ। और वो जो बरसात को पानी है इन साल भर आपा पीने का मायने या घरेलू उपयोग में भी काम में ले सका हाँ। तो आपा जमीनी पानी की बचत कर सका हाँ, साथ ही जो वो पानी जो घर का मायने आपा जो पानी हार्वेस्ट का जका कुआ है वह बना लिया तो भी बरसात को पानी है जो को जमीन में जाके और जल भराव की कुछ के कदम है जो को आपा उठा सका हाँ। तो पानी है जो को अपन हर दृष्टि से बचाना है, चाहे वो बरसात का पानी ने संरक्षण करने की बात हो, चाहे घर का मायने उपयोग होने वाला पानी है बी की बचत की बात हो, कपड़ा बर्तन ये सब धोवा तो पानी है जो को हिसाब से काम में लेवा, नल चालू छोड़ के कोई काम ना करा एर पानी को पुनः उपयोग करा। जैसे कि आरओ को पानी जो को निकले बेसो आप फल सब्जियां धो लिया, फल सब्जियां धोया पाछे भी पानी ने आप पेड़ पौधा में नाख दिया तो एक ही जल ने कई प्रकार तो आप उपयोग कर सका हाँ। सार्वजनिक जगह जलाशय है बल्कि सफाई रमाई ने योगदान देवा ताकि साफ सुथरो पानी है जो अपने पशु पक्षियों ने मिल सके। जल जीवन को आधार है और इन्हें बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

को आपने बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जे कि आपा कोई चीज खरीदा तो भी का मिलता जुलता कई प्रकार का उत्पाद आपने देखने मिल जाए, तो मिलता जुलता जका उत्पाद है बस वो धोखाधड़ी होने की संभावना रहे है, तो आपने सतर्क रहने की जरूरत है। और कुछ बातों को जे आप ध्यान रखा तो धोखाधड़ी से बच सका हाँ। जे कि जो भी आप सामान खरीदा हाँ तो भी की पैकेजिंग और भी के ऊपर जो छपेड़ो लेबल है बिना आप ध्यान देखा, जो को ब्रांड आप खरीदना चाहवा हाँ भी का ब्रांड का एक विशेष निशान बनेड़ा हुए, कुछ चिन्ह हुए हैं, कुछ भी का पीछे का डिजाइन हुए है जो कि देख के आप पहचान सका हाँ कि वो उत्पाद असली है या नकली है। तो सब पहले तो आप ब्रांड को नाम देखा भी को जो को लोगो या भी की जो छाप बनेड़ी है बिना देखा, एर भी का नाम की स्पेलिंग पढ़ना, क्योंकि मिलता जुलता जगह उत्पाद बने हैं या फिर जो नकली कंपनियां जो सामान बनावे हैं तो बाकी मायने थोड़ो सो फेर बदल कर दे है, देखने में यह लगेगा कि वही नाम होगो, लेकिन जब भी का नाम की आप स्पेलिंग पढ़ा तो अपन बेरो पड़े है कि स्पेलिंग गलत है या कुछ ए ई को कुछ फर्क है, तो वो मामूली सो जो फर्क है वो ही आपने धोखाधड़ी को शिकार बना दे है। ये वास्ते सतर्कता के साथ नाम देख के छाप देख के एर भी के स्पेलिंग पढ़ के भी का पाछा ही आप भी चीज ने खरीदा। दूसरी बात आ कि नकली जो उत्पाद हुए है वहां में अक्सर छोटी छोटी गलतियां छिपेड़ी हुए है, जे कि जो उत्पाद बढ़े को निशान बनेड़ो है, जो छाप बनेड़ी है, भी को जो चित्र है वो थोड़ो बहुत आडो टेढ़ो हो सके है, रंग में फर्क हो सके है, छोटो बड़ो हो सके है, तो आ चीजों को अपने गौर करने की जरूरत है कि जो आप हमेशा से उपयोग में जो चीज ले रहे हाँ तो वे चीज के मायने और ई चीज में के फर्क है। असली उत्पाद के ऊपर पर एक QR कोड छपेड़ो हुए है, भी को होलोग्राम हुआ है, सीरियल नंबर भी आपने देखने मिले हैं, लेकिन जो बिस है मिलतो जुलतो कोई नकली उत्पाद है तो भी के ऊपर ये चीजें आपने मिलेंगी को नहीं, तो आंको भी आपने ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ भी की कीमत के ऊपर भी आपने देखना चाहिए, जे आप एक चीज खरीदी हाँ बिको पैसा आप अपनी जेब से दिया ही तो अपन ध्यान रहेगो कितने कीमत की है, बिसी ही चीज दूसरी बार आपने खरीदनी हुए और बी की कीमत आपने कम दिखे तो सोचना चाहिए कि एक ही कीमत क्या हो सके है। बहुत कम कीमत पर जब अपन कोई सामान मिल है तो बिक अक्सर नकली होने की संभावना हो सके है, ये वास्ते बहुत सस्तो मतलब सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सावधानी जब बरतांगा तो असली और नकली का मायने पहचान कर पावांगा। एर जब भी आपा कोई चीज खरीदा तो भरोसेमंद जी की जगह है बैठे सो खरीदा, हमेशा जो की अधिकृत दुकाना बनेड़ी बैठे खरीदा, या फिर जब आपा कोई ऑनलाइन सामान खरीदा तो एक भरोसेमंद जो वेबसाइट है बैठे सो ही सामान खरीदा, सड़क किनारे या अनजान दुकाना से जो आपा सामान खरीदा तो सावधानी बरतने की सही में आपने जरूरत है, क्योंकि अपनी गाड़ी जो कमाई है वह कठी नकली सामान के ऊपर बर्बाद नहीं हो जाए। जो भी सामान खरीदा भी की बिल जरूर लेवा, वारंटी कार्ड हुए तो वो जरूर लेवा, साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन सामान खरीदा तो जो का ग्राहक है बाका रिव्यू देड़ा हुआ है, बाका उत्पाद करने के उत्पाद खरीदने के बाद में जब उपयोग करे है तो आपका अनुभव साझा करया करे है, तो वे अनुभव जरूर पढ़ा साथ ही साथ रेटिंग भी देखा और बिक बाद ही आपा कोई सामान है जो को जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदा, सतर्क भी रहा जागरूक बनिया रहा ताकि अपने साथ कोई धोखाधड़ी ना होवे। कोई भी सामान खरीदने से पहले आपा भी की चौकी तरह जांच पड़ताल कर लिया कि वो सामान सही है या नहीं है, या फिर एक महीना अपने कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कद बने हो, एक ही अंतिम तिथि उपयोग की कौन सी है, ऐसे चीजें देखने के पाछे ही अपन कोई सामान है जो को खरीदना चाहिए। पैकेट के ऊपर प्राय भी का मायने काम आने वाली चीजें की जानकारी लिखेड़ी हुए है, एक सूची हुए है जिसके कमाई ने लिखेड़ो हुए कई कमाई ने कौन कौन सी चीज है जिसकी कितनी कितनी मात्रा कमाई ने काम में ली गई है, तो वे अपन जरूर पढ़ा कठी या नहीं हुए कि आपा कोई सामान खरीद के लिया और भी कह मायने जो सामान काम में लिएड़ो है भी सो अपन एलर्जी हुए या अपने ना जस्त हुए तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाए, ये वास्ते सतर्कता बहुत जरूरी है। अंतिम तिथि और उपयोग की जो अंतिम तिथि है और भी के साथ ही जो बढ़ने की तिथि है बने भी आपा देख के खरीदा ताकि पुराना सामान ना अपने घर में आ पावे,
तो कोई भी उत्पाद हो, हर उत्पाद के बनावट में की पैकिंग

0: पैकेजिंग देखो लेवल और कंपनी के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वे पढ़ने के पाछे ही कोई सामान खरीदा ताकि अपा मिलता जुलता जका नाम है उत्पाद है बाकी धोखाधड़ी से बच सका।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

इस आतरे से लोकगीत के साथ ही आज को कार्यक्रम को टीम है वो पूरा होने में है बहनों, तो फेरू मिलन तानी अबार के लिए विनोद ने देव सीख, राम राम।

0: More from our correspondent.
1: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed by Caudal Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvind Bellarmino and Kayla Danel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under centenary tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal till tomorrow. The weather agency has issued an orange colour warning for thunder squall conditions over Rajasthan, East Uttar Pradesh, Odisha and West Madhya Pradesh today. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's wholesale price index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूच

0: निका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
0: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।

0: system.
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
3: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक

बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे

0: से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमरीका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया।
1: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मेलबॉक्स।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आज के इस प्रोग्राम में अपनी रेडियो दोस्त आरती सोनी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के गाए शोर फिल्म के गीत के साथ। ईमेल्स के जरिए प्रोग्राम में शामिल होने वाले श्रोता हैं निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमलजीत कौर। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति प्रयाग और इनके तमाम साथी। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्य साहू। रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इन्हीं के साथ हमारे श्रोता और भी हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और मधुकर येले। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। इसी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। मेरठ केंट से दिग्दर्शन और कविता गोड भी ईमेल के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। मोहाली चंडीगढ़ से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। इसी प्रोग्राम में अपनी शिरकत कर रहे हैं गांव जाखोत से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से श्रोता हैं बबलेश पंवार, डेनी पंवार, मनीष पंवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम, सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। और इन्हीं के साथ हमारे श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। इन तमाम श्रोताओं की पसंद पर शोर फिल्म के इस गीत के साथ आज के मेलबॉक्स कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। आवाजें हैं मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की।

अगले गीत की फरमाइश के साथ ही हमारे कुछ और श्रोता जुड़ रहे हैं और नाम है सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके तमाम साथी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गुजरात गांधीग्राम से हमारे श्रोता हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। इसी के साथ ईमेल भेजकर इस प्रोग्राम में शिरकत की है भिलाई नगर से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक, श्याम कुंवर और अनुश्री, भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा और इनके साथी ईमेल कर रहे हैं हमें हमेरी कला जिला झुंझुनू से, बहादुरवास झुंझुनू से महेश जानू, चिड़ावा झुंझुनू से सुखजिंद्र बुगालिया, बीदासर झुंझुनू से बलजीत कांटीवाल और नई सड़क चूरू से राजा नंदवाणी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी। चूरू से ही इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जगदीश मंडल और अभिषेक मंडल। दूधवा मीठा चूरू से हमारे श्रोता हैं राकेश कुमार। गांव लादड़िया चूरू से है अरविंद खारड़िया। गोंदिया महाराष्ट्र से ईमेल्स के जरिए इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं निशांत फुंडे, ओम प्रकाश फुंडे, मानसी और चेतन। इन सभी ने सुनना चाहा है नाम फिल्म का गीत, तो प्रोग्राम चल रहा है मेलबॉक्स और इस वक्त आपके रेडियो सेट पर आ रहा है नाम फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: त्रेगी से इस प्रोग्राम में ईमेल्स के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले श्रोताओं में भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, छत्तीसगढ़ से मेलबॉक्स प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय। इसके साथ संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी। इन्हीं गीतों के साथ अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं श्रोताओं में नरलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला, विशाल, सोपान तायडे और नारायण इंगले, संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल, कार्तिक और सचिन चौहान। ये तमाम साथी हमें ईमेल कर रहे हैं सिरसला फवारा चौक जिला चूरू से। और इसी के साथ जो और हमारे साथी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनके नाम बताना चाहेंगे। ओम रेडियो श्रोता संघ काली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। आप सभी की पसंद पर हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत। प्रोग्राम है मेलबॉक्स।
1: बहुत दूर मुझे चल...

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से प्रोग्राम मेलबॉक्स, और अगला गीत फिल्म का नाम सूरज, और इस गीत को सुनना चाहते हैं वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश कुमार, सन्नी और जेमिन भावसार। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे ने, राजकोट से जेमिन कुमार भावसार, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला, जवाहर नगर दुर्ग से आर सी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा और लखनपाल रंधावा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं सूरज फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस प्रोग्राम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे की आवाज में आनंद फिल्म से, और सुनने की ख्वाहिशमंद गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार, गांव खरकड़ा 24

इसी से गोलू कांगड़ा, सागर अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। झारखंड से आप हैं मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। इसी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और इनके तमाम साथी। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया, जयकिशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका और इनके परिवार के सभी सदस्य। उत्तर प्रदेश से मेलबॉक्स प्रोग्राम में अपनी शिरकत जमा रहे हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और कुमकुम सुरलकर। खंडवा से हमारे साथी हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति। आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर मेलबॉक्स प्रोग्राम का ये अंतिम गीत मन्ना डे की आवाज में आनंद फिल्म से।

0: चला जाए सपनों से आगे कहां जिंदगी।
1: श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम मेल बॉक्स। यदि आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है manbhavanchuru@gmail.com। और अब इस गीत के साथ ही प्रोग्राम मेल बॉक्स से अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त आरती सोनी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मेलबॉक्स। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रथम सभा भी यहीं संपन्न होती है। द्वितीय सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी के साथ हमारी आज की ये दूसरी सभा आरंभ होती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम युवाणी लेकर मैं आपका रेडियो साथी रवि प्रकाश, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज युवाणी में है विविध रंग, चर्चा करेंगे विभिन्न पहलुओं पर। फिलहाल सुनते हैं इस गीत को।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोताओं, इस संदेश के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। और आज है 15 जून। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव की खान होते हैं और उनका अनुभव परिवार के लिए तो उपयोगी होता ही है, वहीं पूरे समाज के लिए वो उपयोगी होते हैं। और हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्गवार होते हैं जो पूरे गाँव की चिंता करते हैं, पूरे शहर की चिंता करते हैं और पूरे देश की चिंता करते हैं। हमें भी उनकी चिंता करने की आवश्यकता होती है। कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जाता है जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार भी कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं, लालच हो सकता है, लोभ हो सकता है या अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो विश्व पटल पर आज ही के दिन यानी 15 जून को दुनिया भर में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय जो दुर्व्यवहार है उनकी उपेक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना होता है। क्योंकि बुजुर्ग होते हैं वो समाज के लिए उपयोगी होते हैं और उनके जो उनकी विशेषताएं होती है वो यही होती हैं कि वो पूरे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस दिवस से जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा करें आपके साथ कि इस दिवस की जो शुरुआत है वो यानी पहली बार इसको 15 जून 2006 को और बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क यानी INPEA और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और दिसंबर 2011 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि कई बुजुर्ग जो होते हैं वो

डर कहें या शर्म कहें या उनको जानकारी का कई बार अभाव भी होता है, तो उसके अभाव में वो अत्याचारों को सहते रहते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार के अत्याचारों की जो रिपोर्ट होती है वो स्थानीय स्तर पर कहीं भी वो दर्ज नहीं करवाते जहां उनको करवानी चाहिए। तो यह दिवस ऐसे बुजुर्गों को उनकी आवाज़ उठाने और उनको आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक सुरक्षित माहौल देने की मांग करता है। मानवाधिकार जो विश्व स्तर पर देखा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस मुद्दे को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार की समस्या के रूप में माना जाता है और बहुत सारे ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं जिनके माध्यम से उन बुजुर्गों को और वो कष्ट झेलने पड़ते हैं, समझना पड़ता है। तो आवश्यकता तो इसी बात की होनी चाहिए कि समाज में इस प्रकार की जागरूकता फैले कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका हम इस रूप में उनके अनुभवों का लाभ लें कि समाज को, हमारे परिवार को ये लाभ हो, ना कि उनको किसी प्रकार के हम दुर्व्यवहार उनके साथ करें, क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय देखा है, एक लंबा अनुभव उनके पास होता है और वो अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, हमने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में शादी विवाह होती है या अन्य किसी प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं तो उनमें बुजुर्गों की जो सलाह होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और बुजुर्ग जिस तरीके से सलाह उसको देते हैं वो सलाह इस रूप में भी महत्वपूर्ण होती है कि उन्होंने उस समस्याओं का सामना किया होता है। मसलन हमने अपने घर में कहीं विवाह शादी में किसी प्रकार की समस्या का हमारे सामने पैदा ना हो, इसके लिए हम बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं क्योंकि उन बुजुर्गों ने उन समस्याओं को कहीं ना कहीं अपने जीवन में फेस किया होता है और उस समस्या का समाधान वो जानते हैं, उस समस्या से किस प्रकार से निजात मिल सके ये भी उनको पता होता है। आवश्यकता होती है कि उचित सम्मान, उचित आदर और उनकी जो गुण है, उनके जो अनुभव है, उनको सहेजने की आवश्यकता इस बात की रहती है। तो इसलिए आवश्यकता की ओर हम चर्चा निश्चित रूप से करें और समाज में इस प्रकार की जागरूकता फैलाएं। हमारे आसपास अगर इस प्रकार की कहीं कोई दुर्घटना या घटना होती है तो उन बुजुर्गवार से हम संपर्क करें और उचित फोरम पर उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको रखने के लिए भी हम प्रयास करें। तो चर्चाएं और भी करेंगे, बातें और भी करेंगे इस विषय को लेकर के। फिलहाल चलते हैं गीत संगीत की ओर।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादाजी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: श्रोताओं, फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में, और हम चर्चा कर रहे थे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में। आपको बताएं कि कई प्रकार के दुर्व्यवहार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ अमूमन देखने को मिलते हैं। वो चाहे शारीरिक दुर्व्यवहार हो, चाहे बुजुर्गों को चोट पहुंचाना हो, शारीरिक यातना देना हो, भावनात्मक या मानसिक दुर्व्यवहार करना हो जिसमें उनका अपमान करना हो, डराना हो, धमकाना हो, या उनकी उपेक्षा की जाए, तो ये सारी गलत बातें हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आर्थिक शोषण, जैसे उनकी संपत्ति है, उनका पैसा है, उसको अवैध रूप से उनका उपयोग करना या दुरुपयोग करना या उन पर कब्जा कर लेना, ये बहुत सारे जो दुर्व्यवहार हैं वो हमारे बुजुर्गों के साथ देखे जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये जो वृद्ध नागरिक हैं वो हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है, और उनके साथ सम्मान और स्नेह के साथ व्यवहार करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य होता है। हम बुजुर्गों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, विश्व स्तर पर चल रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, उन सबको हमें समझना चाहिए, जानकारी हम सबको होनी चाहिए, और हम ऐसे बुजुर्गों को इसके लिए मोटिवेट भी करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के माध्यम से और जाने कि किस प्रकार से

के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे कैसे निजात पाई जाए। महात्मा गांधी ने एक बार श्रोताओं से कहा था कि किसी भी प्रकार के शोषण को सहना भी बड़ा बुरा काम होता है, करना तो बुरा होता ही है लेकिन किसी शोषण को सहना भी, सहन करना भी बहुत बुरी एक उसको आदत कह सकते हैं। तो हमें किसी प्रकार से शोषण को रोकना है और जो भी शोषित है, जिसके ऊपर भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उस दुर्व्यवहार के प्रति उसे जागरूक होना ही चाहिए। और इस दिन की सार्थकता तभी हो सकती है जब हम इस अपने प्रण में निश्चित रूप से सफल हो और हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज ये एक यूँ कह सकते हैं कि एक आइकॉन के रूप में हमारे सामने रहें, हम भी उनको माने, क्योंकि इनकी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। हम अगर हमारे जो बुजुर्गवार हैं उनकी उनसे चर्चा करें, समय समय पर उनके साथ बैठें, जब भी समय हमारे पास हो हम उनकी बातों को सुनें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं जहाँ उनके पास अनुभव होते हैं बहुत सारी ऐसी बातें भी हमको बता सकते हैं जो हमारे जीवन में भविष्य में काम निश्चित रूप से आएंगी। तो उनके साथ हम समय बिताएं, उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें और उनके साथ उनके सुख दुख में उनका हालचाल पूछें। कहीं हारी बीमारी में जहां उनको किसी चिकित्सक के पास ले जाना हो तो उचित उनको चिकित्सक के पास दिखाने का हम प्रयास करें। और विशेष रूप से जो मानसिक रूप से जो बुजुर्ग होते हैं उनमें काफ़ी मजबूती भी होती है, तो उनकी मानसिक मजबूती का हमें भी लाभ होता है। एक परिवार में जब एक बुजुर्ग हमारे परिवार में मुखिया के रूप में रहता है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो एकदम निस्फिकर हो सकते हैं, उनको लगता है कि हमारे ऊपर किसी का साया है और हमारे हमें ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे पास ऐसे व्यक्ति की आशीर्वाद है कि जिससे हमें कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और ये बात है भी सही, क्योंकि परिवार में अगर बुजुर्ग हों तो परिवार में अन्य लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर संकट हो, खुशी हो, गम हो, उसमें वो बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और उसको सहन करना और उस खुशी को आनंद के साथ अनुभव करना ये भी हमें वो सिखाएंगे।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। और आज सोमवार है और आज कार्यक्रम होता है हमारे प्रेरणा स्रोत। हम चर्चा करना चाहेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो सुपरस्टार खिलाड़ी है स्मृति मंधाना जी की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिसे पेरी के अलावा भारतीय जो बल्लेबाज स्मृति मंधाना एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें दो बार प्रतिष्ठित आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आपको ये बताएं कि बचपन से ही इनको खेल के प्रति बड़ी रुचि रही। इनके परिवार में खेल का बड़ा माहौल था। इनके जो भाई थे वो क्रिकेट खेलते थे और इनके पिताजी भी खेलों से काफ़ी जुड़े हुए थे। और बचपन में जब अपने भाई को इन्होंने खेलते हुए देखा तो दिग्गज जो मिताली राज, हमारी जो महिला क्रिकेट टीम की जो पूर्व कप्तान रही हैं, उनके उत्तराधिकारी के रूप में आपकी जो यात्रा है बहुत आकर्षक रही है। और वर्तमान में जो महिला क्रिकेट में आपको एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में से एक माना जाता है। आपके कई जो रिकॉर्ड हैं वो प्रतिष्ठित हैं, विश्व स्तर पर उनको बड़ी सराहना मिली है और आईसीसी महिला क्रिकेट रैंकिंग में पूर्व विश्व नंबर 1 बल्लेबाज। आपने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जो अपने योगदान के माध्यम से और एक ऊंचाइयां प्रदान की है, उसके लिए आप एक रोल मॉडल के रूप में युवाओं के लिए जानी जा सकती हैं। स्मृति मंधाना जी का जन्म 18 जुलाई 1996 में

बम्बई में हुआ था, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उनका जो परिवार था वो माधव नगर सांगली में आकर के बस गया। पारिवारिक, जैसे हमने पहले चर्चा की, इनके पिताजी भी जिला स्तर पर खेल चुके हैं और इनके भाई भी क्रिकेट के प्रति उनकी काफ़ी रुचि थी और

रुचि, उसके देखते हुए इनके मन में एक क्रिकेट के प्रति जुनून पैदा हुआ और इस जुनून ने स्मृति मंधाना को विश्व स्तर की एक खिलाड़ी के रूप में हम सब के सामने देखा। और बहुत ये खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि आपने जिस रूप में ट्रेनिंग की, 9 साल की उम्र तक स्मृति मंधाना और अंडर 15 महाराष्ट्र की ओर से खेलने लगी और सीनियर के खिलाफ हावी होने के बाद 11 साल की उम्र में अंडर 19 स्टेट टीम में आपको शामिल किया गया। तो वहाँ आपकी काबिलियत को सबने सराहा, पढ़ाई के साथ साथ आपने क्रिकेट को भी पूरा समय दिया। 15 साल की उम्र में आपने बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से, कहाँ एक कई बार व्यक्ति के सामने ऐसा मोड़ आकर खड़ा हो जाता है कि जहाँ उसको ये सोचना पड़ता है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर जाना है। वो विज्ञान पढ़ना चाहती थी लेकिन उनकी माता जी ने उन्हें कहा कि क्रिकेट और पढ़ाई में संतुलन बनाना कई बार कठिन हो जाता है। तो मंधाना ने कॉमर्स चुना और बाद में सांगली में और कॉमर्स से स्नातक की डिग्री आपने प्राप्त की। तो ये भी एक बहुत ही आनंद का विषय है कि खेल के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई को भी बड़ा महत्व दिया और पढ़ने के साथ साथ खेल को भी बड़ा महत्व दिया। 2013 आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल लेकर के आया। आपने भारतीय टीम में डेब्यू किया और 5 अप्रैल को वडोदरा में बांग्लादेश की महिला टीम के खिलाफ एक T20 मैच में आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और उस समय आपकी जो उम्र थी वो 16 साल की थी। अपने पदार्पण मैच में ही आपने अपनी जो काबिलियत थी उनको दिखा दिया था। 36 गेंदों में 39 रन की आपने शानदार पारी खेली और टीम को 10 रन से जीतने में बहुत महत्वपूर्ण आपने रोल अदा किया और उस पूरी द्विपक्षीय सीरीज को आपने 3-0 से क्लीन स्वीप करने में भी काफ़ी टीम की मदद की। देश का मान सम्मान आपने बढ़ाया। उसके बाद अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ आपका पहला जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला, तीसरे नंबर पर आकर इस युवा खिलाड़ी ने 35 गेंदों में 25 रन की बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली। अपना रोल मॉडल की अगर बात करें तो आप राहुल द्रविड़ को अपना रोल मॉडल मानती हैं। राहुल द्रविड़ जो भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे हैं और एक शानदार बल्लेबाज के रूप में आपकी पहचान मानी जाती है, तो उनको आपने एक रोल मॉडल के रूप में माना और भारतीय महिला क्रिकेट टीम में आपने जिस रूप में इस टीम को खड़ा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया, निश्चित रूप से आप हर युवा की एक रोल मॉडल हो सकती हैं। हर युवा को यूँ कहा जा सकता है कि वो अगर आपसे मोटिवेट हों तो अपने किसी भी लक्ष्य को वो हासिल कर सकता है। तो इस रूप में देखा जाए तो बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया, जिसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं गीत संगीत की ओर।

श्रोताओं, फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे प्रेरणा स्रोत। और हम बात कर रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट की एक स्टार खिलाड़ी, उनके बारे में, स्मृति मंधाना जी के बारे में। और आपको ये बताएं कि इंटर स्टेट अंडर 19 एक दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान स्मृति मंधाना जी ने बड़ोदरा के ओलंपिक क्रिकेट ग्राउंड में और गुजरात के खिलाफ सिर्फ 150 गेंदों में नाबाद 224 रनों की पारी खेली। ये पारी ऐसी पारी है जिसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। किसी भी स्तर पर 50 ओवर के क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली वे पहली भारतीय महिला बनी।

उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 शतक और भी लगाए। 13 अगस्त 2014 को इंग्लैंड की महिला टीम के खिलाफ आपने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। कहा जाता है कि असली जो खिलाड़ी की एक प्रतिभा का निखार होता है वो टेस्ट मैच में होता है। तो उन्होंने पहली पारी में 22 रन और दूसरी पारी में 51 रन की महत्वपूर्ण पारी आपने खेली और वहाँ आपका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत शानदार आपका रहा। भारतीय टीम का एक अभिन्न अंग रही हैं और जब हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेट की एक महिला क्रिकेट की एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में आपकी भी अच्छी पहचान है संन्यास ले चुकी तो मिताली राज के साथ आप बल्लेबाजी के एक स्तंभ के रूप में आपकी पहचान रही और 2016 में हुबार्ट बेरेरी ओवल में एक वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक यानी 109 गेंदों में 102 रन आपने बनाए और उस सीजन के लिए ICC महिला टीम ऑफ द ईयर के रूप में आपको चुना गया। 2017 में ICC महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में आपने टीम की बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका उसमें कही जा सकती है। जब भारत फाइनल में पहुंचा ये पहला फाइनल विश्व कप था जिसमें महिला टीम भारत की पहुंची थी। हालांकि फाइनल में इंग्लैंड के हाथों सिर्फ 9 रनों से हार गई थी भारतीय टीम लेकिन 2005 के बाद यह भारत का पहला विश्व कप फाइनल था जब महिला टीम ने इस प्रकार का शानदार प्रदर्शन इसमें किया था। यूं भी कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन आपके खेल में वो निखार आता जा रहा है और दिन प्रतिदिन यूं कह सकते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट के रूप में क्रिकेटर के रूप में आपकी जो पहचान है वो लगातार बनती जा रही है। आपने पहले ही वनडे में पहले वनडे से लेकर के और एक ऐसा आंकड़ा लोगों के सामने रखा है कि एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके नाम 5000 से अधिक रन आपके इस फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं तो एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में आपकी पहचान है और वर्तमान में भी विश्व कप चल रहा है महिला क्रिकेट टीम का और हमारी जो टीम है वो शानदार परफॉर्म कर रही है। हमारी टीम ने कई विदेशी टीमों को बहुत शानदार तरीके से परास्त किया है और आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के जो खिलाड़ी हैं वो हर व्यक्ति को प्रेरणा देने के काम करते हैं और आने वाले जो खिलाड़ी हैं आने वाले जो लोग हैं जो इस क्रिकेट को या किसी अन्य क्षेत्र में भी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो महान खिलाड़ी होते हैं उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में आज ये हमने इनकी चर्चा की।

फिर से स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में, और हमने विभिन्न पहलुओं पर आपसे चर्चाएं की। और एक बात और आपसे करना चाहेंगे कि जो अलग सोचते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, ये एक शक्तिशाली विचार है जो लीक से हटकर सोचने का काम करते हैं, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक नई पहचान बनाने वालों को प्रेरित करता है। अलग सोचने के बहुत सारे मुख्य सिद्धांत हो सकते हैं, जैसे नए रास्तों का निर्माण हम कर सकते हैं। जो लोग सब कुछ करते हैं या सभी लोग जो करते हैं उसकी ओर ना करके हम कुछ नया सोचें, कुछ इस प्रकार का काम करें जो सबको मिलता है, भीड़ से अलग रास्ता चुनने वाले हमेशा नया इतिहास लिखते हैं। और कई बार हम किसी रास्ते को अपना लेते हैं, किसी काम को हम करते हैं, लेकिन उसमें असफलता प्राप्त हो जाती है। तो यही तो एक सफलता की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि गलतियों से व्यक्ति सीखता है। अलग सोच रखने वाले असफलता को अंत नहीं बल्कि एक प्रकार से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मानते हैं, क्योंकि गलती के बाद उस गलती को दोहराया नहीं जाना चाहिए, यही उसकी सफलता का एक मूल कारण होता है। क्योंकि हम अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ता के साथ भी रखे रहें, अपने विचारों पर हम टिके रहें, हमारे मन में जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हमें पूर्ण करना है। ये आवश्यक नहीं कि हम समाज के जो पुराने ढर्रे हैं उन पर चलते रहें, और ये भी आवश्यक नहीं कि हम उन पुराने ढर्रों को चुनौती देने का साहस भी करें, ये भी कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बीच में एक रास्ता हम अगर हम निकालें तो एक नया लीक से हटकर हम कुछ ऐसा काम करने में सफल हो सकते हैं जो हमें सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बहुत काफ़ी हो सकता है। हम किसी से भी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्तित्व की कहानी को हम पढ़ सकते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम अगर सोचें, उनके बारे में सोचकर उनके विचारों को आत्मसात करने का

प्रयास करें तो कहीं कुछ अलग सोच हमारे अंदर पैदा हो सकती है। ये आवश्यक नहीं कि जिस रास्ते का जो वर्णन उन महापुरुषों ने किया है हम उस रास्ते पर चलें, हम अपना एक नया रास्ता बनाएं, हम एक उससे मिलता जुलता यूँ कहें कि उससे एक प्रेरणा लेकर के उस रास्ते पर चलें, सकारात्मकता के साथ चलें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भाव होना आवश्यक होता है। कई बार हम देखते हैं कि नकारात्मकता की वजह से व्यक्ति अपने अपनी जो सफलता है उससे हाथ धो बैठता है। अगर हम हमारे अंदर सकारात्मक भाव रहेगा, इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत है थिंक पॉजिटिव, यानी हमें हमेशा सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सकारात्मक भाव हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन पर चला जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नया रास्ता तलाश करने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं और लालायित भी रहते हैं। आवश्यकता है उसको पहचानने की।

श्रोताओं, मोटिवेशन प्रकृति की हर चीज़ में विद्यमान रहती है। हम पेड़ और पौधे हमारे यूँ कह सकते हैं हमारी प्रेरणा का एक रूप हो सकते हैं। सूरज की किरणें जब हम रोज सुबह उठते हैं और अंधेरे को चीर कर जब एक नई उम्मीद और ऊर्जा जगाने की काम सूरज की किरणें करती हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा हो सकती है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हमारे लिए प्रेरणा का काम कर सकती हैं। हवा, ये हमारे लिए प्रेरणा का काम कर सकती है। तो जीवन का सार यही है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव ये जिंदगी का एक नियम होता है। बस हर परिस्थिति में अपनी सकारात्मकता बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें और प्रकृति के साथ मेलजोल रखें। और जो बातें हमने आपसे की, निश्चित रूप से वो बातें आपके लिए उपयोगी होंगी। इस भावना के साथ आज के इस युवाणी कार्यक्रम से अपने रेडियो साथी रवि प्रकाश को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 107 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले

अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे शाम 6:10 पर।

शाम छह बजकर 20 मिनट पर आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। शाम छह बजकर 30 मिनट पर आप सुन पाएंगे जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इसमें आज आप सुन पाएंगे चर्चा इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्यों के बारे में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में और समन्वित कृषि प्रबंधन के बारे में। साथ ही आपको सुनवाए जाएंगे लोकगीत और लोक भजन। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत में गुलदस्ता और 8:45 पर आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9।

रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत। नौ 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम खेल जगत।

रात्रि 10:30 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत। सभा के अंत में रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अभी अपने जाना कार्यक्रम विवरण FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रकृति कभी अपनी दी हुई वस्तुओं का अहंकार नहीं करती, लेकिन उपयोग करने पर सबक जरूर सिखाती है। FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30

0: In the FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in the Group F match in Mexico today. And with that, we end this news bulletin.
1: FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत।

की तस्वीर। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। 6:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्येन प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिमेशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्तभण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकान्तरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमन्त्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थव्यवस्थां प्रौद्योगिकी विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायि प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें तमाब्दे स्लोवाकिया देशस्य स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति, अनया व्यापारस्य स्वतन्त्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत्

0: मुख्य समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागड़े आज सीकर के जसरासर में शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर सहित शेखावाटी क्षेत्र के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है। राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज भारत दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में रिकॉर्ड निवेश आया है और व्यापक बदलाव हुए हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों में योग सत्र आयोजित करने की योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक तथा विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह शिविर सरकार की सुशासन और जनसेवा की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने शिविर में आवेदकों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर

0: पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
1: प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से भी स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भरतपुर और डीग में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सलुम्बर जिले में कल इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, वहीं ग्रामीण सेवा शिविर कई ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज एक कार और डंपर के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। कार में सवार ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और बीकानेर के मुकाम से वापस हरियाणा जा रहे थे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नागौर के अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत का आज उनके पैतृक गांव पांचोटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ ने खेमाराम कुमावत की देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देवरी गांव के पास एक कंटेनर ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बच्चों को दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए कल से राज्यव्यापी स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, साफ पीने का पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि देश में डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। गर्मियों और बारिश के मौसम में बच्चे दस्त रोग से अधिक ग्रसित होते हैं और उपचार नहीं होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार की थीम पर गतिविधियां आयोजित होंगी।
2: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
1: प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक PAM का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस माह की बैठक का मुख्य विषय पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रहा। विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए जन जागरूकता को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवारों की सहभागिता को और खासतौर पर पिता की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में आज कहीं आंधी चली तो कहीं हल्की सी मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में सुबह अंधड़ के बाद तेज बरसात हुई।

0: जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। झुंझुनू में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। चूरू और डीग में आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई अन्य पूर्वी जिलों में भी आंधी और तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। इन गतिविधियों से पूर्वी हिस्सों में पारा गिरा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी उमस और गर्मी का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अगले 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। देशभर में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हो जाएगा। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिसे आवश्यकता और मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। इस तरह राजस्थान में इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी, जो प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। उदयपुर जिले में इन दिनों मानसून की आहट के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी है। वहीं जिले में जल संरक्षण, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक गतिविधियां और जनसरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारम्भ किया गया। उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम दूध तलाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव टी रविकांत, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पेयजल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मॉनसून के आगमन से पहले उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक प्रमुख ट्रेवल पोर्टल द्वारा जारी भारत के शीर्ष 15 मॉनसून पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। राजस्थान से केवल उदयपुर और माउंट आबू ही इस सूची में शामिल हुए हैं। सूची में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। मानसून के दौरान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर झीलों के भरने के साथ अरावली क्षेत्र का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। सज्जनगढ़ स्थित मानसून पैलेस से झीलों, पहाड़ियों और बादलों का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उदयपुर ने मानसून पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट

0: बेंच स्थापित करने पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने और बड़ी आबादी को न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग रखी गई है। उदयपुर की बेटी खुशी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में प्राप्त की और बाद में बीएन विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की। खुशी ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर एसएसबी चयन प्रक्रिया पूरी की और हैदराबाद में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी चयन हो चुका है। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमबीबीएस, एमडीएमएस तथा विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब जिराफ लाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग द्वारा जिराफ के लिए विशेष एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सेंचुरी क्षेत्र में बनाए जा रहे इस परिसर में पर्यटकों के लिए पाथवे और जिराफ के लिए अलग होल्डिंग तथा डिस्प्ले एरिया विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नर और मादा जिराफ का जोड़ा उदयपुर लाया जाएगा। जिराफ के आने के बाद वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आज औपचारिक कार्यक्रमारी शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माए भया सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। और प्रदेश माए बच्चा ने दस्त हूँ बचावण और इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सीकर जिला रा जसरा सरमाए शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारी मूर्त रो अनावरण कीनो। ई मौके श्री बागड़े शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारा बलिदान ने याद करता थका कहो कि हमारी शहादत आवती पीढ़ियां ने हमेशा सीख देवेला। राज्यपाल कहो कि राजस्थान शूरवीरां री धरती रही है। वह कहो कि नागौर सीकर और झुंझुनू समेत शेखावाटी हलका रा जवान देश री हिफाजत रा काम माए मोटो योगदान दीनो है। राज्यपाल कार्यक्रम माए शहीद रा परिवार वाला रो ईमान कीनो और स्मारक परिसर माए पौधा रोपया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि भारत मजबूत भरोसाओं भरिया देश रा तौर सामने आ रहो है। वे आज जोधपुर माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल रा कामकाज री उपलब्धियां रो जिक्र कीनो। शेखावत कहो कि भारत दुनिया री उम्मीदां रो केंद्र बन गयो है और साल 2047 ताई विकसित देश बनवाओड़ी तेजियों बढ़ रियो है। वे कहो कि लाड़ला 12 साल माए देश माए जबरदस्त निवेश आयो है और मोटा बदलाव आया है।
2: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आयुष मंत्रालय री ओर आज नई दिल्ली माए औपचारिक कार्यक्रम शुरू करी चिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ जीवन के लिए योग राखी

0: जो है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली में खबर नवीसा ने बतायो कि योग दिवस रो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में कोलकाता रा रेड रोड माथे रखियो जावेला। वे बतायो कि इस मौके 45 मिनट रो योग प्रोटोकॉल रखियो जावेला। खास कार्यक्रम सा गई हुगली नदी में 500 नावा में योग सत्र रखने री योजना है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कीनो। वे शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर सरकार कानून जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजना मारा बारा माए जानकारी हासिल कीनी। मुख्यमंत्री पात्र लोगों ने पट्टा सर्टिफिकेट मदद री रकम रा चेक और विशेष योग्यजन ने जिंदगी आसान बनावन रा साजो सामान दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जयपुर विकास प्राधिकरण रा नागरिक सेवा केंद्र में लगाया जा रहा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कर व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। इस मौके वे कहो कि ऐ शिविर सरकार री सुशासन और जन सेवा री सोच ने सांचीकरण में खास काम कर रहा है। मुख्य सचिव शिविर में मौजूद लोगों सागे बातचीत कीनी। वे अहलकारा ने शिविर में आवन वाला लोगों ने साफ कोई सागे आसान तरीकाओं टेम सर सेवा मुहैया करावन रा हुकम दीना।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज भरतपुर और डीग माई लगाई जा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। वह जनताओं सरकार री न्यारी न्यारी योजनाओं रो फायदो लेवन री अरज कीनी। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढमी करौली माई व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। सलूम्बर जिला रा नगर परिषद हल्का माई काल शिविर लगाया जावेला, जदके गांवई हल्का माई मैथुड़ी झल्लारा की माता सुला जय समंदरी पीलादर सेमारी री सड़कड़ी सराड़ा री चावंड और लसाड़िया री सती की चोरी ग्राम पंचायत माए शिविर लगाया जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए नेशनल हाईवे नंबर 11 माथे आज एक कार रे डंपर री फेंट माए आजावन रे कारण व्या हादसाओं एक ही परिवार रा 6 जना री मौत वे की। मरण वाला माए 2 महिलावा, 1 लोग और 3 बच्चा शामिल है, जदक एक टावरी घनी जख्मी वेगी जिनरो बीकानेर रा PBM अस्पताल माए इलाज चाल रियो है। कार माए सवार ए लोग हरियाणा रा माए फतेहाबाद रा रहवासी हा। असम रा जोरहाट माए भारतीय वायुसेना रा AN-32 विमान हादसा माए वीर गति हासिल करन वाला नागौर रा वायु अग्निवीर खेमाराम कुमावत रो आज मारा गांव पांचोटा माए फौजी मानसा गए दाग करती उचियो। मानी पार्थिव देह खास विमानु जयपुर हवाई अड्डा माथे लाई ची। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ खेमाराम कुमावत री देह माथे फूल चढ़ार माना श्रद्धा भाव सागे याद कीना। प्रदेश में बच्चा ने दस्त लागण बचावण और दस्त मंदा भया बच्चा रा इलाज सारू चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओरों काल स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करियो जावेला। 31 जुलाई ताई चलन वाला ई अभियान रा तहत 5 साल री उम्र छोटा बच्चा माए डायरिया री रोकथाम टेम सर इलाज साफ सफाई पीवण रा साफ पानी और जन जागरूकता सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जावेला। चिकित्सा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि डायरिया आज ही बच्चों का स्वास्थ्य उंजुड़ी

0: गंभीर चुनौती है। वह कहो कि उनाड़ा और चौमासा में बच्चा ने दस्त लागण री बत्ती शंका रहवे है और एड़ो भेवन री सूरत में इलाज नहीं मिलन पर मौत रो खतरो ही वह है। स्वास्थ्य विभाग में बाल स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी बतायो कि अभियान रे दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार मुद्दा मत है कार्यक्रम रखा जावेला।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में आज महिला और बाल विकास विभाग री ओर अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक राखी ची। इनरो खास मुद्दों पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका राखी चियो। विभाग रे शासन सचिव पूनम बतायो कि मीटिंग रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यार्थियां रमाए तांसाग केंद्र री आगली कार्य योजना, बच्चा री आंगनबाड़ी केंद्र में रोजीना हाजिरी, शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम और पोषण जुड़िया व्यवहार में बदलाव रे बारा में चर्चा कीनी। मौसम प्रदेश रा उत्तराद उगनी जिला में आज एक कठे कठे आंधी बारिश हुई। हनुमानगढ़ में आज सवारा तेज अंधड़ सा गई बरसात सड़क माथे पानी भर गयो। झुंझुनू में दोपहर पाछे कई ठोणा जोरदार बायरो बाजण सागे बिरखा भी। चूरू और डीग में आंधी पाछे बारिश हुए वणु मौसम ठंडो वे गयो। राज्य रा कई उगनी जिला में आंधी बारिश रा समाचार है। दूजी कानी आतुणी हल्का में हाल ही उमस और गर्मी रो जोर है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आवता 4-5 दिन ताय आंधी बारिश चालता रहे वन रा आसार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम रे 135वीं कड़ी फैला। इन सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माय खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आज औपचारिक कार्यक्रम री शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माय व्या सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। हर प्रदेश माय बच्चा न दस्तू बचावन और इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

FM 100.7 MHz ब्रह्म आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

0: जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आंधी आई जोर की, टूटा खंबा पेड़, रेत उड़ाई मोकली, दिया गणा थपेड़। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहे सगले भाई बहना ने टावरा ने बड़े बुजुर्गान भाई अयुब खान गोड़
5: और खेता भाई रो
4: मोकला मोकलो
5: राम राम
4: राम राम खेता भाई राम राम।
5: आ तो यू भाई थम पेड़ा लग गया आंधी का मां, पेड़ता ही देखो चेता ही नहीं तो आंधी आई
4: भाभी जोर की
5: और पणांधी फेरे की छंटा छिड़को भी की तो ठंड पड़ी होगी।
4: हाँ बिल्कुल।
5: पण यू भाई एक बात आप खेती और गृहस्थी की करानी और ये भगत की करा इसी आंधी लगे टगे किसानी के लिए फायदेगी। वर्षा पहली है जो क्या आंधी खूब चलते और यहाँ मानता के महीनों डेढ़ महीनों आंधी आऊ है ना, और भी आंधी के मां रेत है जो की पूरी उथल पुथल हो जाते और भी उथल पुथल में आप गर्मी की जुताई की बात करता कभी तावड़ो पड़न लाग जा डगल पाड़ है जो की जुताई करो पाड़ करो तो डगल पाड़ पाड़ करा जब आंधी चालती जब वह पूरा का पूरी जकी डगल पाड़ डगड़ा के बीच में जगह जगह होती आग जकी कीमिया रेत उडेडी हुए नी
4: उपजाऊ माटी
5: वाय ऊपर ऊपर की तरह तय आ तो एक डंग माने के 2 अंगल 3 अंगल जकी रेत है जमीन के ऊपर उरुरा भूमि के ऊपर बा चूंटियो घी हो है और वो इनू बिने जाके डगड़ा री जगह बैठे वो फिट हो जा और फिर ऊपर बरसा में तो वो चूरड़ो सो चूरमू हो जाए और फिर भी हम बीज रोपे जब फिर स्वाभाविक बात है कि बीज ने ताकत मिले और वो बदवाड़े जो को सुवाई करे। आ बरसांगे मां जो की आंधी है जो की देखने को नहीं आई आज कह रहे नहीं दौड़े दो फर है नहीं जो की आंधी उमट की आई आपने चूरू में आसा पासा को अभी आपने ठाको नहीं पर आपने चूरू के मां जो की बा उमट की आंधी आई बा पूरी पूरी गंगानगर काली भी चिकनी रेत की आंधी है
4: और वो उपजाऊपन हो
5: और पूरो खंको वो यहाँ को नहीं एक तो सागे हवा का फटकारा हुआ बहुत जोर का हवा का फटकारा को नहीं पूरा बवंडर का पंखा नहीं पूरो को पूरो बहुत ज्यादा दबाव बिना हवा और बिंगमा रेत की मात्रा ज्यादा है तो बा रेत जटे जटे पड़ती जा अरे फिर है बा आगे उठती जा फिर बा रेत है जबकि आगू आगे चालती जा तो एक डंगू वो रेत को उठाओ और बिंगे सागे सागे जकी पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करने री वनस्पति है बंग भी बीजांगो भी पलायन हो आप यहां माना के खींप हुई बुई हुई फोग होया आकड़ा होया दतुरा होया ने इतनी बात की जकी वनस्पति है आ वनस्पतियां बीज है जगह जगह उठ गए अगू आगे चलता है आप यहां मना के खींप का जगह डोडांगे माओ निकेल लिया जगह पे
4: फूलिया
5: फूलिया ने बंगे तो

0: लहरें बाजना बाजना पूरा टाबर बनो गेट है
1: बिल्कुल
0: है नी
1: मतलब बचपन की बात है जी की कार्यक्रम के माध्यम से याद आएगी।
0: तो बे वो जो को किए वो प्लान हुए ईशान दी का माँ प्लान हुए एक जगह फिर बे दूसरी जगह और दूसरी जगह जाके किन्ने रेत में दबे दबे फिर जहाँ छंटा छिड़को फिर बे भगत आया उगे जब वो जो को पारिस्थिति तंत्र है जो को वो ढांचो बिंगो बने हो रहे हैं
1: बिल्कुल।
0: तो कुल मिला के आज की ई भगत की आंधी एक दृष्टि नुकसान हो उसका जी हाँ परसों पर दिन वो भूचाल आयो वो भूचाल दरखत तोड़ जीव मार भूचाल आज की आंधी आई आंधी नुकसानदायक आंधी कौन है। तो इन ढंगी जी आंधी चल रहे जब तो फायदे की बात है।
1: थे कार्यक्रम में शुरू में बात करी के लाड वर्षा से आंधी को जी को प्रचलन है वो आपने बहुत ही कम देखने पुराने जमाने की आप कहता भाई बात करा तो आपने राजस्थान की एक कहावत भी चाले आपने शेखावाटी अंचल की भी कहावत चालेड़ी है कभी शेखावाटी ने शेखावाटी पाव आटो तीन पा माटी के भी गृहणिया जब आटो गूंद बैठती तो बा पाव आटे ने शेर में तब्दील है बा आंधी कर देती। तो बा कहता भाई स्थिति आज आप देखने को नहीं
0: मिले भाई एक और भी हो है प्राय प्राय किसान के निरोग स्वास्थ्य की बात करे ने अने तो निरोग स्वास्थ्य की बात करे चल सीठट्टा मजाक माँ कह के शहर में रहनी तो बा कह रहे नहीं गलियां री उडेड़ी गर्द को भी मशीरवाड़ मने वो आटो और खेत में रेडियो जो की कोरी रेत चूर के खाए अने तो बिंगो निरोग हो चुको स्वरूप तो नक है वही होगा पर बीहू ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन ढंगा जगह प्रकृति का विविध रूप है आंधी में तावड़ो पाड़ो अने सगला रूप मिला के ही अपनी आज कायनात दुनिया जकी है। तो आंधी का भगत आंधी नहीं चलेगी तो फिर कद चलेगी पर एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए भाई अपा आंधी में पाड़ो तावड़ो सगला ने मिला के अपा कायनात बना देने तो इन ढंगों जो गृहस्थी को ढांचो है नी वो भी विविध विविध रूप है टाबराओं भी है लुगाइयों भी है मानसाओं भी है बूढ़ा बडेराओं भी है सगड़ों मिलके जकी गृहस्थी में
1: बाही गृहस्थी
0: बाही गृहस्थी है नी और भी गृहस्थी में जितो मोल टाबरिया को है बितो मोल भी बडेरे को है भी है नी। तो आज आप बात कर रहे हैं संदर्भ में कि आज एकदम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार निषेध दिवस है नी तो दुर्व्यवहार के लिए जागरूकता को दिन दुनिया में मनाया जा रहा है क्या प्रति हाजरी लगावे सगड़ा चिकनी रोटी भी नहीं मिले के आओ कमा के दे लिया रहे कमा रहे पण जको कमा के घर ने खड़ो करियो है घर आज ताणी अठा आयो है वो बुजुर्ग है या फिर जो को टब्बर है जो को भविष्य में कमाओ को कमान लायक हो जवान मने को कदर तो तीनों पीढ़ियां बराबर होगी नी आज जो को कमा रहे है आज जो आपने कमाने की स्थिति में लाके खड़ा कर या तड़के जो को कमाओ को बराबरी स्थिति होगी नी
1: की बराबरी
0: होगी नी। तो सुननिया गिणनिया ने आप बात कहंगा के तीनों स्थितियां बराबर है तो तीनों के प्रति घर में सम्मान होना चाहिए बुजुर्ग हुए बुजुर्ग होने के लिए एक प्राय प्राय देखे अनदेखी कर जाएंगी और अनदेखी करने के मां एक मोटो कारण हो बुजुर्ग ने पूरे जीवन का तजर्बा है
1: बिल्कुल
0: भाई आपा 40-50 की औसता में बैठे तो लहर ने 20 साल का तजर्बा अपने कन है आपने कने जो कोई 20 साल को बैठे को जवान टापर भी ने कहा या ना करे कर या कर दे मार सा ही हुई मतलब आपने कने जो को अर्जित ज्ञान है संचित जो को ज्ञान है वो चेष्टा करा के वो ज्ञान भी कायम अपन डाल दें तो भी मैं फोड़ा नहीं पड़े आपनो सोचो है। तो बुजुर्ग कने जका 60-70-80 साल का बुजुर्ग है बा कने 40-40-50-50 साल को आपको जूनगा तजर्बा है और बात तजर्बा ने वो चेष्टा करे कि मैं अगली पीढ़ी ने बताऊ
1: तजर्बा देऊ
0: और अगली पीढ़ी ने टेम को नहीं के खाके और डेण दिमाग लहरो को छोड़ नहीं के झरझर कन था होगी एक तो बट्ठे पो बुजुर्ग वेलना शिकार हुआ दूसरो हुआ कि किन्नी गलत करतो है भी आपा जवान आपा किन्नी गलत करता हूं आपने समझ को नहीं आपने समझ में तो बढ़िया है पर भी बुजुर्ग पे देख खेड़ा हुआ भी ने लगे इन आज तो सही लाग रहे आगे जाके आ खड़े को तो वो कहना ना टबर आ को नहीं करनी यहाँ कर गलत हो तो यहाँ सीकर जद आपने लगे के यार वो डैनियो हर जगह
1: आपके
0: टांग डाण लग गयो आपने डंगो बढ़िया कर फिर भी बढ़िया भी इन्हें कोनी सुहावे तो बे दोनों स्थितियां।

0: दोनों स्थितियां में फिर वो बुजुर्ग की अवहेलना करने शुरू करे, बेसा गए झिणकण लाग गए, बेसा गए कवा सुनी होने लग जा, बेसा गए दुर्व्यवहार होने लग जा, और फिर बाहर धीरे धीरे धीरे कह रही राड जी की तर तर तर बदती जा। और एक कहू भाई, एक तो खास बात ध्यान रखनी चाहिए, थाने में अगर गाड़ काटूंगा नहीं थारा मारा संबंध तो खराब है, धने आत्मा ने दुख पुग्यो आ तो तय, पर चैन जिस स्वर सोई मैं कौन सुखा, नींद भी मन को नहीं आवेगी, बबड़ बबड़ के जागांगा यार का यू भाई ने तो गाल काट दिया यार के मतलब है कौन के
1: बिल्कुल।
0: तो दुख दोनों का नहीं है, दुर्व्यवहार करनी ने भी और दुर्व्यवहार भोगने दोनों का दुख है। तो अपा चेष्टा करा के बुजुर्ग ही नहीं
1: देखो खेता भाई, अपने के थोड़ो सो यूरोपीय कल्चर को भी अपने क्षेत्र में जो प्रभाव है वो लगे तो बे ने तो आपने बिल्कुल ही स्वीकार कौन करनो, अपना बडेरा है वह आपने जन्म दिए, जन्म के सागे आपने शिक्षा दी, शिक्षा के सागे जी को अनुभव दिए, तो अब बुढ़ापे में अपनो यो फर्ज बने कभी आप अपने बड़ा बुजुर्ग अपने घर बैठे है वह अपनी चौकीदारी और कर रहे हैं वो पूरी तरह से मान सम्मान खान पीन रहन सहन की व्यवस्था अपनो एक सामाजिक दायित्व बने, अपनी जिम्मेदारी बने, और खेती और गृहस्थी अपनो जी को कार्यक्रम है तो गृहस्थी की बात भी आप अपने इतालवा से बतलाता रहा कभी गृहस्थी का मायने बडेरों लेके टाबर तक को ख्यात आपन है जी को राखनो है, बुजुर्गों को थोड़ा सो बनाने प्यार की जरूरत है, थोड़ा सो साफ सफाई की जरूरत है, थोड़े से अच्छे खाने की जरूरत है, तो बाको मन से जी की दुआ निकलेगी क्या करे ना कि मन से दुआ निकलेगी बा मानस का पार जावे, तो पार आपने नेगेटिव रूप में नहीं लेकिन पॉजिटिव रूप में है खेता भाई बा लेनी है, तो इसके लिए आपने अपने बुजुर्गों के लिए हर तरह से आपने तैयार रहना है। बहुत सी जगह अपन देखने भी मिलेगा आप बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आर्थिक बांगो शोषण करे लाग रहे हैं, बांगे सम्मान कमाई ने आप ठेस है बा पुंचावे लाग रहे हैं, तो एक एक एक बार तो आप मन में राजी हो जावा, लेकिन अपनी आत्मा से जब आप पूछा खेता भाई तो आत्मा कदे आ गवाही कौन देगी एक आप है जिका आपके बडेरे ने सागे थे दुर्व्यवहार करके है जिको मन राजी हो है। तो देखो अंग मायने शारीरिक दुर्व्यवहार की आप बात करा तो अंग मायने मारपीट चोट, तो चोट पर खुद के भी लाग रही है मारपीट अगर आप अपने बुजुर्ग के सागे कर रहे हैं तो उपले की मार है खेता भाई कठन कठा आपने झेलनी पड़ सी, तो अपने दुर्व्यवहार की जब आप बात करा कि अपना बडेरा पेंशन ले रहा है या कोई सरकारी सेवा से रिटायरमेंट होने के बाद में तो कई जगह देखने भी आवे सुनने में भी आवे कभी पेंशन न देने की वजह से आपके बुजुर्ग के साथ वो दुर्व्यवहार करे, तो दुर्व्यवहार अपना आप में एक यल को शब्द है खेता भाई के व्यवहार नाम की कोई चीज ही को नहीं होवे, तो दुर्व्यवहार ने आप अपने अपने जीवन में अपने परिवार में अपने समाज में अपनी गली में अपने गांव में अपने गुआड़ के मायने अपन कैसे ही है जी को नहीं करनो है।
0: अयो भाई दुर्व्यवहार है माड़ो व्यवहार है ना, और माड़ो व्यवहार है नहीं वो चाहे बुजुर्ग सागे करो और बहुत जवान सागे बज्जे तो माड़ो ही होगा
1: हाँ।
0: कौन है? और एक चीज और देख लो के खास करे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपन बुजुर्गांग दुर्व्यवहार की बात करा, दुर्व्यवहार कठा हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है संगत के कारण सग रहने के कारण थे मे अठे बैठे आपस में बतलावन हुआ है कि नहीं बतलावन में तू तड़ाक हो गयो तो एक दूसरे में दुर्व्यवहार कराना थे थारे गरी और मैं मेरे गरी हूं जो दुर्व्यवहार किन्नू हुएगा कौन ही हुएगा नहीं, तो भारतीय परिवार की अवधारणा संयुक्त परिवार की है ना, थे बीच में पश्चिमी ताने की बात करें बटे एकल परिवार की अवधारणा है, बट आप ये कि टाबर कमा के खान लाग गयो जब टाबर की गृहस्थी ना कह बिंग पति पत्नी पे ना करो और बुजुर्ग आपको ना करे, और लगे टके जी भारत में भी संयुक्त परिवार टूटे एकला रहने लगे नहीं तो शाना माँ बाप है जका जका भी जका शहरा में दुआ करने लगे भी थे थारो नाके बंगलो क्वार्टर ले लो थे टाबरा में रसो में आराम हो रहा काम करना रही आवे कोई दिक्कत को नहीं, जरूर तो ये हरी बीमारी हुई तो बुला लिया स्थिति आने लगी नहीं
1: बिल्कुल आवे लगी,
0: तो कोई देश हूं तो आप कूंत कर को नहीं सका कि अथुण देशा में बुजुर्ग सागे माड़ो व्यवहार हो बिंग आप देखा देखी कर एक अवधारणा अपनी है जो क्या गलत है, कई कई बड़ी सी स्थिति हुए कि भारतीय परिवार संयुक्त परिवार आगे मां बुजुर्ग की हालत इसी हुए कि बुजुर्ग ने बाहर ली पोड़ के मां आप माचो गाजा रखा बंग जो को खंकार पैसा जो की थूकने की दिक्कत

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: किसान भाइयों, आज संदेश पाठ आपरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। इस संदेश में पहला आप शारदार अभिषेक को गायडो मीठो सो लोकगीत सुने, और ये लोकगीत तू पहला है। देखो, गृहस्थी की आपा खूब सारी बतलावन करी का अपने गृहस्थी के मायने बढ़ेरा है, बाको मान सम्मान है, वो आपने उचित तरीके से है वो करना है। और अब देखो
5: भाई, एक और भी है, बढ़ेरा है नहीं, फलदार दरखत है,
4: फलदार दरखत और 12 महीना फल देवे है
5: ने? हाँ। तो अपन बांगी देखो कीमत है नी, बात तो समझनी पड़ेगी। भलाई आप बांगे बाठा मार के भी बांग सत्यानाश कर दे फलांगो, एर जे भलाई है आप भगत आया बाने
4: सहज की भी राख
5: है, जरूरत मुताबिक आप बाने लेस का फड़ा ने तोड़ सका। जद ओडी आवे जद बांक ने बैठ के पूछ सका दादा किया होगी, आ ताऊ किया होगी, आ बाबा किया सी होगी, अपने के करना चाहिए, वो भी अनुभव के तजर्बे के फलदार दरखत कने है बे गुण। और कहबत भी है नहीं के

बूढ़ी ने तो बरात में चाल के ले जानता करे, एक दो बूढ़ियों तो होनी चाहिए, कदे पच्ची आवेगी तो निकाल ले वो कोनी के, तो बे फरदार दरखत हो बंगा आप तजर्बा ले सका।

0: महीने जटक खारो पानी है, कुआं से सिंचाई कर दिया, तो नींबू वर्गीय फल अगर आप लेना चाहवा तो वह बड़ा ही आसानी से आप है जी को पौधो तैयार करके है वो ले इसका
1: बातचीत। एक और भी है, देखो फल दो स्वरूप में है, एक तो पेड़ के स्वरूप में हो, एक झाड़ी के स्वरूप में है ना। अनार लगटके आप झाड़ स्वरूप में लेनो बेस्ट रहे। थे थाई एप्पल की बात करी, बिने बेरीडी मनाना हूं, तोड़ने में पड़ने में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जब झाड़ी रूप में ले हुए हर साल काट के और तैयार कर लिया, जब फिर वापस दुआड़ करके और जुम्मा डालियांगे बोला के, तो जट झाड़ी रूप में ले हुए नहीं बट अन्न की जगह सब्जी उत्पाद दशा के बहुत महत्वपूर्ण रहे। कतारों कतार आप झाड़ी लगा दी, अनार लगा दी, नींबू लगा दी, थाई एप्पल की झाड़ी लगा दी, मांगे बीच में जगह जगह है बट सब्जी
0: उत्पादन
1: बहुत ज्यादा होगा। जो पेड़ है झाड़ी नहीं है पेड़ है बट फिर अन्न उत्पादन बहुत बढ़िया हो, तो उसको कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। और आवेदन का तरीका है जका स्कीम के लिए आप बता भी रहे हो और जका विभाग में जाके जकी और जानकारियां भी ले जाएगी, तो अपा तो आई कहवा के सरकार की कोई भी योजना है भी योजना ने पूरी समझे और समझ के आ लागू करे के आपने लागू है कोनी। कई कई बार यहाँ हो जाए कि आपा ने तो अनुदान मिलना चाहिए, किन
0: मिलो
1: चाहे बागवानी मिशन मिलो, चाहे वो भेड़ पालन मिशन मिलो, चाहे वो कृषि उपकरण मिलो, भी सोच
0: को सदुपयोग है वो अपना किसान नहीं, भाई करे
1: वो ले लियो वो थारे ऊपर ही आगे पटे है ने, या फिर दूसरे कोई किसान है जो नुकसान में होनु है। कई कई बार बैठे बैठे आप बात करांगे, आप बैठे ये कमरे के में आप 10 बल्ब जगा रखा कोई दिक्कत को नहीं, जगा रखा काम आप एक बल्ब ही चल सके, 9 बल्ब घोस के कोई दूर किने खेत की डाणी में बैठे ताणी बा बिजली पुगती आप बचा रहा, तो आ समझ रखने आप जरूरी है कि अगर आप किन्ने भी कोई स्कीम में लाभ नहीं ले रहे दुरुपयोग कर रहे तो कोई एक लाभ लेनी है बंदा को आप
0: नुकसान
1: कर रहे
0: बिल्कुल,
1: तो सरकार के भी मिशन में आप सहयोग करा और आप खुद लाभ ले और दूसरों को सुनने गिनने भी ने लाभ
0: बिल्कुल। बातचीत तो आप और भी करेंगे, आप एक बार फिर चंपा मेथी हो गायडो मीठो सो लोकगीत सुनाओ अपने ही तालुआ ने।

0: किसान भाई, अभी आपने चंपा और मेथियो गायडो मीठो सो लोग गीत सुने। और खेता भाई, चलता चलता अपने किसान भाई से देखो, खेती बाड़ी की जो बात है बा आप पूरी करा, क्योंकि आपनों कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, यार गृहस्थी की आप खूब बात कर ली, खेती बाड़ी की कर ली। अब एक बतलाव और है कि भाई खेती बाड़ी के सागे सागे आप और कौन कौन सा काम है वह करा, जैसे अपनी आय है वह दो गुणी तीन गुणी चार गुणी, तो एक के लिए किसाना के लिए बहुत सारी भाई भी सरकार की कल्याणकारी योजना रही है। जब मैं आप खेती बाड़ी के साथ पशुपालन को काम है, मुर्गी पालन को काम है, मधुमक्खी पालन को काम है, एक अलावा खूब सारा जिका उत्पादन आप अपने खेती बाड़ी के साथ ले रहे हैं वो है जिको अलग ही है
1: भाई। एक तो रहने चाहे कौन से भी बिणन जो चाहे भी में बैलेंस तो जरूरी होना जरूरी है, समन्वित स्वरूप है नहीं वो होना तो बहुत जरूरी है। और खेती के मामले में नहीं, खेती के मामले में तो आज आ टाइम हो गयो के बीमो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है। अपा फलदार दरखत लगा लिया बिने कद कौन सी दवाई देनी, कुद फल काणो हो गयो और हो गयो, कोई माखी ला गई के स्थिति बा समझ ली, फल भी तोड़ना हो कद तोड़नो है, आधा फल तो काचा तोड़ के फिर पिड़िया पाके है, चिकू चिकू और आप और कई कई पर काचा टूटते है खराब हो है के भी चिकू पपीते की बात करा तो ना कही होगी, पर वह चीज आपने समझ दूसरी फिर भी बाजार की न हो, कई फल तो ईशा हुआ है चार दिन फिर बिक जा तो भी कोई दिक्कत को नहीं, कई फल ईशा हुआ आज तो तड़के भी कहीं पार पड़े
0: पार पड़े नहीं,
1: नहीं। तो बात समझ होनी जरूरी है। ये फसल ऐसा के की स्थिति है के आप फसल ले रहे हैं बाजार की के की स्थिति है, अच्छा फसल आप खेत के मैं खड़ा हूं बेचा जब आप मुनाफे में रहा के घेरे ले आ गए छह महीना बारह महीना बखारी में रखे फिर बेचने की स्थिति में आप फायदे में रहा, वर्गीकरण स्त्रीकरण जी आप कहवा वो करने अच्छो नाज एक हल्की नाज कच्चो नाज एक नहीं करने वो करा को नहीं करा, तो वो जो सुगड़ो मैनेजमेंट है नी प्रबंधन है वो प्रबंधन बहुत मान है। और रलवा खेती फुरवा खेती की बात करता आप रहता है, बीज बदल देंगे दो साल हर एक चीज की बात करता है, उजको है नहीं वो स्वरूप है भी आपने समझना पड़ेगा
0: बिल्कुल। और ये समझ के सागे देखो अपना किसान भाई है खेता भाई, आजकल जागरूकता है बांग माइन खूब बड़ी है, खेती बाड़ी के सागे देखो बदल बदल की खेती लेवल आ गया, खेती बाड़ी के सागे आपको पशुपालन को काम शुरू कर लियो, पशुपालन के सागे सागे डेयरी को जिको उत्पादन है, और डेयरी में भी देखो घरा है वह छाछ है दही है पनीर है आंको उत्पादन है वो लेनो शुरू कर दियो, तो जिया जिया अपने खेतीबाड़ी का जितना भी प्रयोग होया है अपने पशुपालन के रूप में होवे, खेतीबाड़ी के रूप में होवे, मुर्गी पालन के रूप में होवे, मछली पालन के रूप में होवे, और एक अलावा आजकल नई नई जी की तकनीक से आप खेतीबाड़ी करा लाग रहे हैं, दूध उत्पादन लेवे लाग रहे हैं, तो चारों मेर है जिको किसाना की आय है वो एक के सागे एक, मान लिया एक आप खेतीबाड़ी कर ली बिग मायने आप ओलावृष्टि होगी अतिवृष्टि होगी बीज खराब आ गयो आपने तो एक कारी नुकसान हो गयो, तो दूसरे कारी जिका दो आपा काम कर रखा तो भी नुकसान की भरपाई है बा कर देवर, आज आपा इतना जागरूक हो गया कि फसल बीमा के रूप में फसलों को बीमा भी है वो भी कराना शुरू कर दियो, तो नुकसान की जब आप बात करा तो किसान के कट्ठे भी कोई तरह को कोई है जिको नुकसान है वो को नहीं। खेता भाई बातचीत तो आप और भी कर, आप एक बार फिर चलता चलता अपने इतालवा ने सुना दें एक अमीठी सी लोक रचना।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। FM 107.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क

0: करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता। आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में वतन के रखवाले फिल्म के इस गीत का।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन

0: एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता। आपको सुनवा रहे हैं आदमी खिलौना है फिल्म के इस गीत को अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था
1: वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में,
0: जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलजस्ता। आपको सुनवा रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और एस जानकी की आवाज़ में जमाई राजा फिल्म के इस गीत को।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म के इस गीत को मोहम्मद अजीज की आवाज में।

मोहम्मद अजीज़ के गाए नगीना फिल्म के संगीत के साथ ही आज का गुलदस्ता फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौते

0: बातों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, या अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है। ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है,

0: ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव

0: रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
2: एलएनजी कैरियर दिशा
3: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। आज के कलाकार थे विद्या आर्य और साथी। FM 100.7 MHz में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ

तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं।

0: आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग, और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जब अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताए। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताए।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है, तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है, तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें, तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
1: धन्यवाद रवि जी। और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है। ठीक है, और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है। ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज़्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ।

0: होगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
1: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है। और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
1: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
1: जी,
3: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस हेतु बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
1: जी,
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
1: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
1: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
0: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
0: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है उसको हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
3: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है तो मैं विस्तार से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बनाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले
1: जी।
2: तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
4: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश जी।
1: जी नमस्कार,
4: दोनों नमस्कार है
1: जी, सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र

0: परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, प्राणायाम है
0: जी।
1: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी,
0: जी क्या सवाल है आपका?
2: कुमार जी नमस्ते।
0: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
2: दीजिए और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
1: नमस्कार नमस्कार।
2: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
0: जी,
2: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
0: जी।
3: जी,
2: और योगा करने से वो ये होगा
3: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है। उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटि सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
1: ये दोनों योग के ही अंग हैं
0: जी,
1: प्राणायाम और आसन
0: जी।
1: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है, जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
0: जी।
1: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
0: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
4: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर
0: जी, बताइए
4: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
1: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
0: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
1: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
0: जी।
1: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है

0: इसको डालें थोड़ा सा आंख में, जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे, तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, सवाल पूछिए।
2: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
1: प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज़्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले भी बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
0: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
1: जी,
0: आपके मन को शांत करने के लिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और अपना जो है ध्यान का, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
1: जी,
0: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
0: हाँ।
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं। ये पहले नहीं हुआ करती थी, उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने। तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है।
1: जी,
3: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है।
1: जी,
3: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज़ भी सुनाई न दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं,
1: समय की
3: फायदा
1: नहीं
3: होता, नुकसान होता है।
1: जी जी जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
1: जी।
3: और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुख आसन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
0: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम हैं जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
3: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा।

0: उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है, बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: धर्मवीर गांधी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप बताएं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
3: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
0: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी।
4: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी,
4: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है।
1: जी
0: रमाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी है योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगा ही नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज़्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका।
5: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल्स रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेनर कर लिया मैंने, देखकर हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या। जी यही सवाल था।
3: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है, आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और

0: श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
1: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है, मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
0: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी, बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करता है। ब्राह्मणी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
0: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि के 10 बजने को है। कुछ देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम खेल जगत। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिनमें सबसे पहली भेंट वार्ता है हैंडबॉल खिलाड़ी एवं कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रविकेश मीणा की बातचीत। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यारा भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में श्याम सिंह राजावत जी, निवासी न्यू जवार कॉलोनी ठींगला सवाई माधोपुर से। दूसरे मेहमान के रूप में पधारे हैं हमारे पास खिलाड़ी चंद्रवीर सिंह राजावत जी, निवासी बाल मंदिर सवाई माधोपुर से। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर।
1: तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम सिंह राजावत जी से। श्याम सिंह जी, आपकी खेल जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है?
2: सर, जब मैं 12 साल का था तब से हैंडबॉल खेलना शुरू किया
1: जी।
2: स्टार्टिंग से सब जूनियर टूर्नामेंट खेले, कई सारी जूनियर भी खेले, हम लगभग 30 से 35 चैंपियनशिप खेली मैंने अभी तक। ठीक है, हम खिलाड़ी के साथ साथ कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को
1: जी।
2: तो हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी हर साल यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मेडल ला रहे हैं, अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और निरंतर प्रतिभाएं बाहर निकल रही है सवाई माधोपुर से।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपकी शुरुआत कब और कहाँ से आरंभ किया आपने खेलना?
3: सभी को नमस्कार। खेलने का तो यह हिसाब से बचपन में जब एक बार गलियों में कॉलोनियों में खेलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वहीं कोई किसी को देखते हैं,

0: और उनको अपना आइडियल बनाते हैं, ऐसे समय पे कुछ सलाह देने वाले मिल जाते हैं, कोचेज मिल जाते हैं, तो वो खेल को निखारते हैं। तो अमूमन छठी सातवीं आठवीं क्लास से जो टीचर थे हमारे शिवदयाल जी भार साहब मानटाउन स्कूल में जो पीटीआई थे, उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मेरे को टीम में लिया
1: जी।
0: उसके बाद ये सफर चलता रहा जो आज तक चल रहा है।
1: बिल्कुल। अच्छा, हैंडबॉल आने से पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली श्याम सिंह राजावत जी?
2: सर, स्टार्टिंग जब सवाईमाधोपुर में हम खेलना शुरू किया था तब चंद्रवीर सर की कोच थे हैंडबॉल के।
1: अच्छा, आज गुरु चेला दोनों साथ।
2: उन्होंने स्टार्ट किया था, तब से हम आज तक हैंडबॉल खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान लेवल पे बात करें तो आपके प्रियदीप सिंह जी हैं जो अभी काउंसिल में कोच लगे हुए हैंडबॉल के, उन्होंने भी काफी सहयोग मिला, उनसे सीखने को काफी कुछ मिला। और सबसे पहले उनकी आज ही काउंसिल में वो कोच लगे, सबसे पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुरी थी।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल तकरीबन रहे, काफी कुछ बच्चों को सिखाया, ग्राउंड चलाया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आपके गुरु कौन है आरंभिक, और इस खेल में कैसे आपकी रुचि बढ़ी है
0: खेल में? जब मैं कॉलेज में था, वहाँ कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में था, तब वहाँ हमारे सर थे और दोस्त लोग थे जो उन्होंने कहा हैंडबॉल में बुलाया। बेसिकली मैं खेलता फुटबॉल था और उन्होंने मुझे बुलाया हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल की स्पीड और हैंडबॉल का मतलब एक कह सकते हो बड़ा फास्ट गेम है
1: जी,
0: जो उसको देख के मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने कहा यार खेलते हैं, खेलने लगे। फिर उसमें बूस्टअप कर दिया कोच प्रियदीप सिंह जी ने, जिनकी पहली पोस्टिंग 2011-12 में राजस्थान काउंसिल में कोच की भर्ती, उसमें वो चयन हुआ उनका, उनकी पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर मिली उनको
1: जी।
0: तो वो उनको देख के उनका चार्म, और वो खुद इतना अच्छा लेवल के प्लेयर थे, तो उनको देख के हम भी सोचा कि ऐसा तो बनी जाए, ऐसा नहीं तो कुछ तो बनी सही इनके जैसा। तो वहां पे फिर हम इस गेम की तरफ मूव करने लग गए।
1: बिल्कुल, सफर तो चलता रहा। चंद्रवीर जी, आज हम देखते हैं कि आपका बचपन से लेकर अब तक का जो भी मैच था, उनमें सबसे यादगार कोई पल अगर आपका रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
2: हाल ही में सर सीनियर चैंपियनशिप खेलने गए थे हुगली वेस्ट बंगाल
1: जी,
2: वहां सर क्वार्टर फाइनल एक मैच चल रहा था हमारा जो यूपी वर्सेस राजस्थान का चल रहा था। वो मैच में एक एक सेकंड सांसे रोकने वाला मैच था। एक यूपी के कोच थे तोहित सर, जब लास्ट 3 सेकंड बच रहे थे तब तोहित सर ने टाइम आउट लेके
1: जी
2: और एक गोल राजस्थान पे करवा के मैच बराबर कर दिया।
1: तो
2: मतलब एक बेहतरीन लेवल की कोचिंग देखने को मिली, बेहतरीन लेवल का मैच देखने को मिला, मतलब बैक टू बैक नेक टू नेक फाइट चल रही थी लास्ट
1: जी।
2: तक
1: जी।
2: फिर 3 सेकंड खत्म होने के बाद मैच टाई हो गया, फिर 2-2 सेकंड का वापस टाइम दिया एक्स्ट्रा टाइम
1: जी,
2: उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था।
1: अच्छा अनुभव आप लेके बैठे हैं
2: जी।
1: अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि अब जो एक सफल हैंडबॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
0: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल
1: समय का,
0: बिल्कुल आप पंक्चुअल रहें ग्राउंड पे, और डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: जब तक आप उस चीज से प्यार नहीं करोगे वो आपको चीज नहीं मिलेगी,
1: हासिल ही नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल। और कोच आपके भले के लिए ही बोलता है, आप उसको अदरवाइज लेते हैं। जिसने कोच की बात को आंख बंद करके फॉलो किया वो बच्चा रुक ही नहीं सकता। ऐसे 50 उदाहरण हैं जो माधोपुर के भी 10-20 उदाहरण हैं और बाहर के भी हैं, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैंडबॉल खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, सिर्फ इसलिए कोच की बात को उन्होंने फॉलो किया। कोच हमेशा बच्चे को सही सलाह और सही गाइडेंस ही देता है।
1: बिल्कुल सही है श्याम सिंह राजावत जी। आप बताएं कि मैच के पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी किस रूप में करते हैं?
2: सर मैच से पहले हम मेंटली फिट होना जरूरी है, प्रेशर में मैच खेलेंगे तो खेल ही नहीं पाएगा खिलाड़ी, तो पहले मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली। उसके बाद ठीक है, मैच के पहले हम थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और वार्म अपिंग करते हैं, तो उससे टीम के साथ एक साथ टीम भावना के साथ खेलते हैं
1: जी।
2: तब जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे मैच में।
1: राजाव जी, आप राष्ट्रीय स्तर के और मेडलिस्ट खिलाड़ी है, तो आप मेरे को ये बताएं कि जो आपको जो प्रेरणा दी है वो किस किस टीम के माध्यम से मिली है?
2: प्रेरणा सर हमको हमारे एचआई के फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी है तेजराज सिंह जी, उन्होंने राजस्थान

0: हर लेवल पे हैंडबॉल गेम को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया है सर, और अभी भी कर ही रहे हैं। और उन्हीं के साथ हमारे जो राजस्थान सेक्रेटरी हैं यश प्रताप सिंह जी, वो भी
1: जी
0: काफी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कई बच्चों का भला किया है और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हर जगह, और हर साल इसी वजह से मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे।
1: अच्छा, हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को समझाएं।
0: हैंडबॉल में सर टीम तो 16 16 खिलाड़ियों की होती है,
1: जी
0: बाकी मैच में 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं।
1: जी
0: राइट पोजीशन की बात करें तो एक गोलकीपर है, लेफ्ट बैक, राइट बैक, और लेफ्ट विंग, राइट विंग, और पिवट प्लेयर, ऐसे करके 7 पोजीशन होती है। और बहुत फास्ट मैच चलता है सर, हर पोजीशन का अलग अलग अपनी भूमिका रहती है।
1: सिंह जी, बात करें अपन जो आपके खेल जीवन में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: खिलाड़ियों का सर संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो सभी के होता है, हर गेम
1: जी
0: वालों को।
1: जी
0: बाकी हमारे हैंडबॉल में ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग पॉपुलरिटी कम है, ठीक है, क्रिकेट जैसा पॉपुलर गेम है नहीं,
1: जी
0: तो गवर्नमेंट से जो भी सहायता सपोर्ट या और भी सोशल, तो वो मिल नहीं पाती है सर। एक्चुअली फाइनेंशली काफी संघर्ष करना पड़ता है हर एक स्पोर्ट्समैन को।
1: जी
0: जैसे कई क्रिकेट वाले हैं उनमें पैसा है सर, वहां तो ठीक है सब जगह सपोर्ट करती है, बाकी निचले स्तर पे खिलाड़ी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है। तो कहीं टूर्नामेंट आयोजित करवाना, टूर्नामेंट में जाना आना, तो कई चीजें जो दिक्कत करती है, आज भी वो चीजें बच्चों के साथ देखने को मिलती है।
1: जी जी चंद्रवीर जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक सफल खिलाड़ी होता है, एक शारीरिक ताकत के साथ और मानसिक संतुलन के साथ, तो इनका, खिलाड़ियों का खान पान कैसा होना चाहिए अभी से, अगर बचपन से बच्चों को हम ये चाहें कि ये खेल में जाए, हैंडबॉल में जाए या किसी भी खेल में जा सके, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए।
2: सर ये हैंडबॉल गेम क्या बड़ा रफ एंड टफ गेम है, और
1: जी
2: ये टोटल 100% बॉडी कांटेक्ट गेम है।
1: जी
2: इसमें आपस में आपको रश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के साथ।
1: जी
2: खान पीने का इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल है। आपको देसी खाना,
1: जी
2: दूध दही छाछ घी, क्यों हैंडबॉल में हनुमानगढ़, गंगानगर या ग्रामीण परिवेश के बच्चे सबसे हैंडबॉल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं।
1: जी
2: जैसे करौली महावीर जी के
1: जी
2: बच्चे,
1: क्या बात है।
2: वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको खान पान उनको अच्छा मिल रहा है गांव के अंदर, और शुद्ध और देसी मिल रहा है। दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, बढ़िया घर पे खा रहे हैं, बाहर का कोई मिलावट ही नहीं खा रहे हैं।
1: बिल्कुल
2: इसलिए उनका बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर, और ये और पावर
1: जी
2: स्ट्रेंथ, फिर
1: जी
2: वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे तो उनका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। खाने पीने के बाद अगर आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन ये अपने आप डेवलप हो जाता है।
1: बिल्कुल। अच्छा श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो टीम भावना का हैंडबॉल में कितना महत्व होता है।
0: टीम भावना, कोऑर्डिनेशन जरूरी है सर। बिना कोऑर्डिनेशन के हैंडबॉल मैच क्या है, टीम मैचेस, तब
1: जी
0: तक हर प्लेयर संघर्ष नहीं करेगा तो टीम जीत नहीं पाएगी।
1: चंद्रवीर जी, सवाई माधोपुर जिले में देखें तो अभी जो सवाई माधोपुर की जो प्रतिभाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि तराशा है सवाई माधोपुर जिले ने।
2: राजस्थान हैंडबॉल की तरफ से, जिला हैंडबॉल संघ की तरफ से जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने भाग लिया,
1: जी
2: उसमें छवि श्री चौहान है जो अभी गुड़गांव में डॉक्टर है,
1: क्या बात है।
2: और तेजस्वनी चुंडावत है जो खुद अभी केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है यहाँ सवाई माधोपुर, अरुण यादव है जो अभी जयपुर में है आरएस की तैयारी कर रहे हैं,
1: जी
2: हितेंद्र सिंह है ये खुद आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जूनियर मेडलिस्ट है। ये
1: जी
2: तेजस्वनी चुंडावत भी सिल्वर नहीं प्लेइंग है, और हितेंद्र सिंह जूनियर मेडलिस्ट है, एरंता है, ज्योति मीना है, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं दो बच्चे बच्चे रावल की,
1: जी
2: सीमा मीना है जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है,
1: जी
2: और भव्या राजावत है ये भी स्कूल नेशनल है, आकांक्षा सैनी ये बच्ची भी स्कूल नेशनल वो ओपन नेशनल है,
1: जी
2: अजय सैनी ये बच्चा अभी रिसेंटली वेस्ट जोन में इसकी टीम ने सिल्वर मेडल, फिर इसका इनका ऑल इंडिया के लिए चयन हुआ, तो ऑल इंडिया में भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 2025-26-27 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया।
1: जी ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, और आप लगातार काम कर रहे हैं तो बच्चों की प्रतिभाएं निखरना एक आम और स्वाभाविक बात है। चंद्रवीर सिंह जी, युवा खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे।
2: सर युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले टाइम टाइम मैनेजमेंट,
1: जी
2: ये और आपकी सुबह उठना है तो उठना है, ग्राउंड जाना है तो जाना है, ये चीज जब तक ये भावना खिलाड़ी में नहीं आई, पंक्चुअलिटी, मेन चीज पंक्चुअलिटी, आप सही टाइम पे सही

0: काम करें
1: जी,
0: टाइम से ग्राउंड जाओ, टाइम से ग्राउंड आओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से पढ़ो भी सही
1: जी। बिल्कुल, पढ़ाई भी जरूरी है खेल के साथ साथ। अच्छा, बात करें श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो भविष्य में आपके खेल संबंधी क्या लक्ष्य हैं?
2: सर, खेल संबंधी भविष्य में यही लक्ष्य है कि हमारे जिले के जो बच्चे हैं वो हैंडबॉल गेम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दें और जिले का और देश का नाम रोशन करें। यही लक्ष्य आगे हम बना के चल रहे हैं और अभी भी निरंतर बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं निरंतर, वो कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है उनको।
1: बिल्कुल चंद्रवीर जी, नए जो बच्चे खेलने के उत्सुक होते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
0: नए बच्चों को संदेश यही है कि आप मोबाइल छोड़ें, टीवी छोड़ें और घर का बिस्तर छोड़ें, टाइम से उठें, ग्राउंड आएं, मेहनत करें। जरूरी नहीं है किसी का साथ हो, टाइम पास नहीं करें, सीरियसली मेहनत करना है तो ग्राउंड आएं, बाकी टाइम पास करने के लिए तो आपका मोबाइल भी है और टीवी भी रखा है घर।
1: बिल्कुल, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी दी, कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे हैंडबॉल खिलाड़ी और कोच श्यामवीर सिंह राजावत और चंद्रवीर सिंह राजावत से रवि केश मीणा की बातचीत। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर केंद्र का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी सूरतगढ़ केंद्र का अंशदान है।
5: श्रोताओं नमस्कार। आज फिटनेस और हेल्थ के बारे में जो बारीकियां हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आमिर खान। आप फिटनेस कोच हैं, नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन आपने फिटनेस में जो है हासिल किया हुआ है और आप बॉडी बिल्डिंग भी आपने लोगों को सिखाई है या उनके साथ काम किया है और ऐसा कह सकते हैं कि आप पिछले 10 सालों से इसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक फिटनेस संस्था भी अपनी चलाते हैं और इस क्षेत्र में लोगों को काफी मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आमिर खान, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आमिर जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिटनेस जो है, फिटनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज है फिटनेस?
6: सर देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जिम जाते हैं, घर पे कोई वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक फिटनेस अपने वर्कआउट में ला सकते हैं ताकि आपका शरीर एक फिट रहे। ना कि आप अगर कोई भी रोजमर्रा का काम कर रहे हैं तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो रोजमर्रा के काम है, उसमें कोई भी अड़चन ना आए।
5: सामान्य लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाती है लोगों की, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त हांफ जाना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द होना, ये सब क्या अपने फिटनेस लेवल को दर्शाते हैं?
6: बिल्कुल सर, अगर आपकी बॉडी में अगर फैट परसेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपका फिटनेस लेवल आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि आपकी बॉडी में आपके फैट ने इतनी ज्यादा मात्रा घेर कर ली है कि आपके बॉडी का जो वेन्स है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, के कारण अपना जो हार्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता और अपना बीपी भी प्रॉब्लम काफी क्रिएट करता है। और आजकल आप देख रहे हो कि काफी हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं लोगों को, आज के टाइम में बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोग खान पीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण ये काफी प्रॉब्लम्स आती है और अपनी इस प्रॉब्लम से आपको निवारण करने के लिए आपको फिटनेस ज्वाइन करनी चाहिए।
5: मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने नाम लिया भी कि हमारी बॉडी में जो है फैट बढ़ जाता है, तो फैट का जो आइडियल परसेंटेज है वो बॉडी में कितना होना चाहिए?
6: देखिए सर, एक जनरल जो आइडिया होता है वो 11-15% के बीच में अपना बॉडी फैट होना चाहिए।
5: तो मेल और फीमेल के लिए जैसा है?
6: फीमेल के लिए आप मान सकते हैं कि 18% तक आप बॉडी फैट उनका रख सकते हैं।
5: तो आज जो हम देख रहे हैं जनरल जो लाइफस्टाइल है हमारा, तो वो तो मेरे हिसाब से 20% से ऊपर सबका फैट आपको देखने को मिलेगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल सर, आज अगर आप देखेंगे एक अनुपात निकालेंगे तो 100 में से सिर्फ 4-5 लोग ही एक जो आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है 11-15 उसके अंदर रहते हैं, बाकी 95% जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी बॉडी की जो संरचना है वो बिल्कुल खराब कर चुके हैं क्योंकि खान पीन उन्होंने अपना ऐसा कर लिया है कि हर चीज में तेल डालना है, बाहर का खाना, फास्ट फूड इतना ज्यादा हो गया है आज के टाइम में कि वो बॉडी की संरचना को पूरा खराब कर रहा है। बॉडी के अंदर फैट की मात्रा 20-25% या 30% भी हमारे चलिए वो भी आज के टाइम में कम है।
5: तो ये जो फैट जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के साथ कोई कनेक्शन?
6: जी बिल्कुल सर, अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि 25% या 30% से भी अगर ज्यादा हो गई है तो अपना क्या होता है, जो अपने फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, वो अपने हार्ट और अपनी ब्लड जो सर्कुलेशन जो संरचना है वो सब तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है, जब भी अपना हार्ट पंप करता है तो अपनी वेन्स के अंदर जब ब्लड निकलता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है अपने फैट के बढ़ने से, जिसके कारण क्या जब भी अपना हार्ट पंप करेगा तो उसको प्रॉपर मात्रा में ब्लड ना मिलने के कारण ठीक है ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है।
5: जी सही कहा आपने कि जब फैट अगर बॉडी में बढ़ेगा तो वो अंततः हमारी जो नाड़ियां हैं जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें जाकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमेगा और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो उसके देखने को मिलते हैं।
6: बिल्कुल सर,
5: हम आपसे जो मुख्य हमारा टॉपिक है आज का फिटनेस पे बात करना चाहेंगे कि अगर किसी को फिटनेस अपनी अच्छी रखनी है, हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो या फिर हम कहें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, तो कहां से वो शुरू करे फिटनेस।
6: देखिए सर, मैं आपको बताता हूं, एक कोई भी इंसान है वो कम से कम 14 या 15 साल का एक होना चाहिए बच्चा
5: जी,
6: ठीक है, तब से वो अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर सकता है। अब फिटनेस लाइफस्टाइल को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना ही अनिवार्य है। अगर आपके आसपास अगर आपके पास जिम है कि जहां पे आप जा सकते हो तो बिल्कुल आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप अपना वर्कआउट भी घर पे कर सकते हो, ठीक है।
5: घर पर क्या वर्कआउट किया जा सकता है?
6: बिल्कुल सर, देखिए घर पे वर्कआउट करना बहुत ही आसान है। अगर आप सुबह भी पूरे 24 घंटे में से अगर एक घंटा अपनी बॉडी को दे सकते हैं तो आप अपने घर पे भी वर्कआउट कीजिए, जिसके लिए आपको ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं होती।
5: तो वो तो हम लोग वॉकिंग कर ही लेते हैं।
6: नहीं सर, देखिए वॉकिंग करने से और फिटनेस का ध्यान रखने से पूरा अलग है, क्योंकि वॉकिंग में क्या होता है जस्ट अपने जो जॉइंट्स है वो मूव करते हैं और अपनी पाचन क्रिया ही वही अच्छी रहती है। आपके फिटनेस लाइफस्टाइल को आप अच्छा नहीं कर सकते वॉकिंग करने से, ना ही अपनी जो बॉडी कंडीशन है वो चेंज कर पाओगे। बस ये है कि हाँ, जब भी आप वॉकिंग करते हो तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो सही रहेगी, क्योंकि अंततः आप थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन अपनी फिटनेस को अच्छा रखने के लिए आप।
5: लेकिन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो वॉकिंग से सुधरती है ये भी तो कहा जाता है।
6: नहीं सर, देखिए अगर आपको बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको फिटनेस के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी 5,000 या 7,000 स्टेप चल पाओगे
5: जी।
6: आप 20,000, 25,000 आप स्टेप नहीं चल पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है उसमें।
5: ठीक है, हम बात करेंगे, आपने बताया घर पर अगर कोई वर्कआउट करना चाहता है तो अगर कोई इक्विपमेंट्स के साथ करना चाहे और बिना इक्विपमेंट के करना चाहे, हम सबसे पहले यही जानेंगे अगर कोई आदमी बिना इक्विपमेंट के घर पर ही शुरू करना चाह रहा है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहूंगा, वॉकिंग तो वो पहले से कर रहा है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहता है, तो वो कैसे शुरू करे?
6: देखिए सर, मैं आपको बेसिक 2-3 एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे कि आप पुशअप्स लगा सकते हो घर पे,
5: ठीक है,
6: ठीक है, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, आप कोर एरिया को कम करने के लिए आप क्रंचेस लगा सकते हो, लेग रेजेस लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो और प्लैंक लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो जनरल फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको अच्छी फिटनेस रखने के लिए आपको जिम जाना अनिवार्य है, या आप अपने घर में कुछ इक्विपमेंट मंगा लीजिए जिससे आप अपनी फिटनेस को अच्छा रख पाए।
5: बेसिक इक्विपमेंट्स?
6: बिल्कुल सर, बेसिक इक्विपमेंट्स में आपको रखने के लिए आप एटलीस्ट 2.5 के 2 डंबल ले सकते हो, 5 केजी के 2 डंबल ले सकते हो और एक रेजिस्टेंट बैंड भी अपने यूज कर सकते हो
5: जी,
6: जिसमें आप अपना जो बॉडी का ऑल ओवर वर्कआउट है वो आप पूरा कर पाओगे।
5: तो जो डंबल हैं उनसे आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, कि डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड से कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बिगिनर जो करना चाहे वो घर पर एक्सरसाइज शुरू कर पाए।
6: देखिए, अगर आप कोई भी वर्कआउट अपना प्लान घर पे चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले 2.5 के डंबल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपने शोल्डर की कोई एक्सरसाइज करनी है तो शोल्डर प्रेस लगा सकते हो, साइड रेजेस लगा सकते हो, फ्रंट रेजेस लगा सकते हो और आप ट्रैप्स लगा सकते हो, ठीक है, ये आपका शोल्डर का वर्कआउट हो गया। अगर आपको चेस्ट का वर्कआउट करना है तो आप सिंपल जमीन पे लेट जाइए, ठीक है, तो आप सिंपल जमीन पे लेट के 5 केजी के डंबल उठा के देन चेस्ट प्रेस लगाइए, देन डंबल फ्लाई भी आप वहां पे कर सकते हैं और पुशअप्स भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल बेसिक जो आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है, अगर आपके माइंड में है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, मेरे को बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आपको जिम में जाना अनिवार्य है, क्योंकि सिर्फ 2 डंबल से आप अपनी ऑल ओवर जो मसल बिल्डिंग को आप इतना इनहेंस नहीं कर पाओगे।
5: नहीं, जैसे आपने अभी जो डंबल के एक्सरसाइजेस बताए वो तो हमारे जो अपर बॉडी है उसमें आप बैक हो गया या फिर शोल्डर और आर्म्स जो है हमारे उनको मजबूत हम कर रहे हैं, बाकी जो लोअर बॉडी पार्ट है जैसे लेग्स है हमारे या फिर हमारी जो कमर है,
6: लोअर बैक
5: है या फिर अपर बैक है, इनको मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज है।
6: जी बिल्कुल, आप अपर बैक को मजबूत करने के लिए आप डेडलिफ्ट जैसे वर्कआउट कर सकते हैं
5: घर पे
6: कर सकते हैं। 2 डंबल से भी ऐसा नहीं है कि डेडलिफ्ट के लिए आपको हैवी डंबल्स की जरूरत पड़ती है, आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आप उनका रेप्स ज्यादा बढ़ा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको 5 से 6 रेप लगाने, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप रेप्स भी ज्यादा लगा सकते हैं, 25 से 30 रेप्स लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक फटीग महसूस होगा उस लेवल पे और उस टाइम में आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो थोड़ी बहुत बनने लग जाएगी। लेकिन आप एक टाइम में आपको फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए आप थोड़े और हैवी डंबल घर पे मंगवा सकते हो, आपकी जो फिटनेस लाइफस्टाइल है वो और अच्छी हो जाएगी, जिसमें अगर अपन कुछ एक्सरसाइज और ऐड करें, जिसमें अपन स्क्वाट्स ऐड कर सकते हैं, लेग्स के लिए लंजेस लगा सकते हैं, सुमो स्क्वाट्स लगा सकते हैं और हिप थ्रस्ट भी लगा सकते हैं, ये आपकी लोअर बॉडी को मजबूत करेगा।
5: आमिर जी, अब हम बात करेंगे बिगिनर से थोड़ा ऊपर, जो आदमी, जो भी महिला है या फिर पुरुष है जो जिम जाना चाहता है, अगर वो जिम जा रहा है तो वो किन बातों का ख्याल रखे, क्या कोई भी व्यक्ति जिम जा सकता है?
6: देखिए, हर कोई व्यक्ति जिम जा सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये हो कि उसका कार्डियोवास्कुलर इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कि वो थोड़ा भी अगर सांस ले,
5: अगर एक बार पहले डॉक्टर को दिखा ले, अगर कोई पहले इश्यू है तो
6: जी, अगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं
5: जी,
6: तो वो पहले स्टार्टिंग यही करे कि वो अपना घर पे वर्कआउट करे एक अच्छे कोच के अंडर में, ठीक है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम कंडीशन आ रखी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो दवाइयां चल रही है, उनसे पहले वो राहत पाए, उसके बाद में वो एक जिम ज्वाइन करे। और जिम जाने से पहले एक खास दिन का ध्यान रखें, जो भी आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो ध्यान नहीं रखते, वो जीन्स में आ जाते हैं, वो स्लीपर्स के अंदर आ जाते हैं, इनमें बिल्कुल वर्कआउट ना करें। आप एक जिम में जाने के लिए प्रॉपर लोअर टी शर्ट और अपना शूज और एक वाटर बॉटल और एक टॉवल वो अपना साथ रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे

0: कोई इंसान अपना पसीना बहाता है
1: जी,
0: जिससे अपने को काफी बीमारियां भी अपने आ सकती है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए आप अपना खुद का टॉवल यूज करें, जो भी आप बेंच यूज कर रहे हो, कहीं पे भी आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी डंबल कर रहे हो, तो उसको अपने स्वेट से दूर रखें,
1: जगह को साफ रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्र इसमें मैटर करती है, जैसे आपने पहले बताया था कि 14-15 साल से ऊपर का, किस उम्र तक के लोग हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो 40 या 50 की उम्र को पार कर जाते हैं वो जनरली ये सोचते हैं कि हमें तो बस अब इन जो हमारी बॉडी पेन कर रही है उसके साथ ही जीना है और धीरे धीरे ऐसे ही मर जाना है।
0: देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, 15 साल के बाद में आप जिम ज्वाइन कीजिए और जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपना जिम के लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आप शारीरिक तौर पे, जैसे अभी आप देखते हो कि 50 से 60 साल के बाद में लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द है, चलने के लिए उनको सहारा चाहिए। और जनरली आप देखो 50 साल वाले लोगों के ये काफी प्रॉब्लम सारी है, वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान नहीं रखते,
1: क्योंकि ऐसा होता है कि 30 की उम्र के बाद में हमारा जो मसल्स है वो घटने लगते हैं बॉडी में, और उनको बनाए रखने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट, ये दोनों जो है बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: डाइट की हम बात करेंगे कि जो जिम जा रहा है वो जिम जाने से पहले क्या खा के जाए।
0: जिम जाने से पहले आप सिंपल एक बनाना खा सकते हैं, आधा घंटा पहले
1: जी,
0: एक बनाना या एक एप्पल। और जिम जाने से पहले अगर आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी का, मिल्क वाली नहीं, ओनली ब्लैक कॉफी, एक कप गर्म पानी के अंदर थोड़ी कॉफी मिला के आप पी सकते हैं, कि वो क्या करेगा, आपको जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे आपको वर्कआउट की तरह प्रेरित करेगा ताकि आप वर्कआउट और अच्छा कर पाओ। और बनाना क्या करता है, अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप जब भी जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, तो आपकी बॉडी में बिल्कुल वीकनेस ना आए, आप वर्कआउट अच्छा कर पाए और 1-1.5 घंटे तक आप वर्कआउट अपना कर पाए।
1: जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, लोगों को लगता है कि जिम जाते ही उनको सबसे पहले वो जो डिब्बे हैं वो शुरू करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को सामान्य फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए काम करना है तो वो घर का बना खाना, साधारण जो हमारा भोजन है उसके साथ भी काम कर सकते हैं। हम आपसे आमिर ये पूछना चाहेंगे कि कितने समय तक जो वर्कआउट है जिम के अंदर वो करना चाहिए।
0: देखिए एज ए बिगिनर के लिए आप, मैं बताता हूँ, कोई भी बिगिनर पर्सन है जो वर्कआउट करना चाहता है वो एटलीस्ट 40 से 45 मिनट या 1 घंटा माने चलिए उनको वर्कआउट करना चाहिए। जिम जाते ही सबसे पहले उनको वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए अपनी बॉडी की प्रॉपर, ताकि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें आपकी बॉडी में कोई भी क्रैम्प्स या मसल पेन इश्यू ना आए, ठीक है। आप अपना वर्कआउट अच्छा करें, देन वर्कआउट खत्म करने के बाद में लास्ट में स्ट्रेचिंग करें ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ में आपने जो बिल्डअप किया है, आपने मसल को फटीक किया है, वो रिलैक्स हो जाए और आपकी जो रक्त प्रवाह है, ठीक है, वो वापस नॉर्मल हो जाए सुचारू रूप से।
1: अगर हमने ग्रुप जो है मसल्स का, जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स है, उनको कर लिया तो उनको रिकवर होने के लिए कितने घंटे का समय लगता है?
0: देखिए अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी है
1: जी,
0: ठीक है, आप अपना खान पीन का पूरा ध्यान रखते हैं, हर 2 से 2.5 घंटे बाद अपनी मील ले रहे हैं, प्रोटीन का लेवल आप प्रॉपर रख रहे हैं बॉडी के अंदर, तो आप मान चलिए 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है उस मसल। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, अगर आपका वर्कआउट करने बाद 2 दिन बाद भी उस मसल के अंदर सोरनेस है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर उत्तम मात्रा के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो आप ये कर सकते हैं कि 1 दिन के अंदर एक ही जो बॉडी का मसल पार्ट ग्रुप है, जैसे चेस्ट है या बैक है, शोल्डर, कोई भी मसल पार्ट है, उसको एक ही कीजिए, जैसे उसकी 4 से 5 एक्सरसाइज इनफ होती है उसको ही कीजिए, ताकि आपकी जो रिकवरी मील्स है वो उसको एक मसल को अच्छे से रिकवर कर सके, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वो पेन ना पड़े।
1: एक ग्रुप आपने हमें बताया, अन्य कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो मसल्स के?
0: जैसे चेस्ट हो गया, अपने चेस्ट हो गया, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स हो गए, फोरआर्म्स हो गई, अपने लेग्स हो गए, ये सब अलग अलग पार्ट्स। और इनको करने के लिए मैं आपको जनरल चीज बताता हूँ, जैसे कोई भी बिगिनर है उसको अगर वर्कआउट करना है तो जैसे मंडे को वो चेस्ट लगा सकता है, ट्यूजडे को वो अपना बैक का वर्कआउट कर सकता है,
1: ठीक है,
0: और अपने वेडनेसडे को अपना लेग का वर्कआउट कर सकता है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे जैसे अपने थर्सडे को अपना बाइसेप ट्राइसेप लगा सकता है, फ्राइडे को अपना शोल्डर का वर्कआउट कर सकता है, और सैटरडे को वापिस लेग्स का वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि लेग्स एक ऐसा पार्ट है कि वो काफी बड़ा मसल ग्रुप है, वो जल्दी से गेन नहीं होता और उस पे क्या होता है, पेन भी काफी होता है, तो हर कोई इंसान मैं देखता हूँ कि लेग्स से एक्सरसाइज होती है उससे दूर भाग, लेकिन लेग का वर्कआउट सबसे अच्छा करना चाहिए आपको, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से आपकी ऑल ओवर बॉडी ज्यादा अच्छी होती है, कंडीशन ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जब मेन ग्रुप की बात करते हैं तो उनका क्या होता है, जब भी अपने लेग्स लगाते हैं तो उनका हार्मोन ज्यादा बिल्डअप होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पावरफुल बनता है, और टेस्टोस्टेरोन जितना अपना अच्छा रहता है मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी उतना ही जल्दी आपका मसल मास रिकवर करेगी और आपका फैट ड्रॉप करेगी।
1: एक मिसकंसेप्शन जो है जनरली देखा जाता है कि महिलाओं को जिम करने की क्या जरूरत है?
0: देखिए सर, आप एक जेंट्स हो या फीमेल हो, दोनों को ही जरूरत पड़ती है, दोनों के शरीर में मसल्स है, दोनों के शरीर में जॉइंट्स है, सबको एक मसल्स को बिल्डअप करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करनी है। लोग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि योगा कर लो, योगा करने से आप फिट रहोगे।
1: योगा भी अच्छा है अपनी जगह, लेकिन अगर अपने को मसल्स को बिल्ड करना है
0: जी,
1: तो हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सर, मैं योगा के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि योगा खराब है, लेकिन योगा से आप अपनी पाचन क्रिया या इनर जो ऑर्गन है आपके वो अच्छे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको मसल बिल्डिंग ही करनी है, आपको बॉडी फिटनेस रखनी है, अपन मसल मास को बिल्डअप करना है, फैट को ड्रॉप करना है, तो आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आप अपने फिटनेस लेवल को आप अचीव कर पाए। और महिलाओं के लिए भी यही है कि आप अपने रेगुलर

0: रूटीन में एक घंटा आप अपना जिम में ज्वाइन कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, आसपास जिम नहीं है या घर से कोई परमिशन नहीं है, तो आप घर में भी अपना वर्कआउट कीजिए।
1: जी, एक जो फिटनेस का बहुत बड़ा पहलू है उस पर हम बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे, जो डाइट है।
0: जी,
1: डाइट में मुख्य रूप से आप हमें ये बता दीजिए कि जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको अपने डाइट में कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड करनी।
0: अगर कोई एग्स खा सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई एग खा सकता है, कोई चिकन खा सकता है, तो दिन के अंदर सिर्फ 5 से 8 अंडे अपने जो रेगुलर रूटीन में आप कह सकते हैं, पूरे दिन के अंदर 5 से 7 अंडे आपने ऐड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 8 के 8 अंडे आपको एक टाइम ही खाने, वो 2 से 4 करके आप कभी भी खा सकते हो। ठीक है, जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। ठीक है, पनीर भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे और घर का बना खाना, दाल चावल, ये बहुत ही अच्छा है। राजमा चावल हो गए, ठीक है, इनमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है। सोयाबीन बड़ी होगी जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है और काफी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, प्रोटीन के लिए काफी लाभदायक भी है। ठीक है, तो आप घर पे भी बना खाना आप आराम से खाइए। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, लेकिन आप ये देखिए काफी लोग क्या करते हैं कि सर हम घर का बना खाते हैं लेकिन हम फिट नहीं रह पा रहे, हमारा वेट बढ़ा जा रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, घर का बना खाना इतना ज्यादा खाते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती।
1: जी जी, सही बात कही आपने कि जो एग्स हैं या फिर चिकन है या फिर किसी भी तरह का नॉन वेज आहार जो आपने बताया, वो अपनी डाइट में हम जो है वो अगर सम्मिलित करते हैं तो प्रोटीन जो है उससे अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ऐसे लोग हमारे आसपास आपको ज्यादा मिलेंगे जो प्योर वेजिटेरियन है।
0: जी बिल्कुल,
1: उनके लिए आप कुछ ऑप्शंस और बताइए कि वो प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ाए।
0: जैसे एक सोया पनीर आती है, सोया पनीर वो खा सकते हैं, राजमा चावल खा सकते हैं। आप देखिए जो आजकल सत्तू पाउडर का काफी चलन है, जो अपने जो काले चने होते हैं उनको पीस कर ही बनाया जाता है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं। दाल चावल खा सकते हैं, सोयाबीन बड़ी अपने को मार्केट में आराम से मिल जाती है, तो वो भी आप इंटेक कर सकते हैं।
1: वे प्रोटीन,
0: और देखिए सर अगर आप इन डाइट्स को प्रॉपर अगर मेजर नहीं रख पाते, ठीक है, तो आप एक प्रोटीन का जो डिब्बा होता है, लोग इसको काफी मिसकंसेप्शन है कि भाई डिब्बा खा के बॉडी बनाई, ऐसा कुछ नहीं था। वो चीजें सिर्फ दूध से ही बनी होती है, बस ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो भी आप जहाँ से भी चीज परचेज कर रहे हो वो ओरिजिनल हो, ताकि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उस चीज का। वो आप ऐड कर सकते हो, इसको प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपने जो भी वर्कआउट किया है उसकी रिकवरी के जो मोड है वो अच्छा हो जाए पहले से।
1: जी, हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आमिर खान की जो बातें हैं उनको सुनकर उनकी लाइफ में मोटिवेशन आए, वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज को चाहे वो घर पर करें या फिर जिम जाकर करें, और अपनी डाइट को जो संतुलित करें, अपने हेल्थ को, अपनी फिटनेस को अच्छा बनाए और एक अच्छे जीवन को जो है जीने की ओर अग्रसर हों। आमिर खान, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे फिटनेस कोच आमिर खान से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र सूरतगढ़ का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे खेल जगत। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से किया गया। FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ गजल्स।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजल्स को। FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। से कुछ देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी

0: और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include